0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

मर्जी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
4: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
4: पेशावरी डेरा।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
8: You are listening 97.1 FM.
9: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
10: You are playing. We are playing.
11: Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजान 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beat.
10: Wow FM. Only you are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Fuzza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों में तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम की लाइव स्टोरी से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदाकाराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम जनाब उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। अरे ऐप से याद आया, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे जनाब। आप जाएंगे गूगल प्ले पे, एप्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एप्पल पर कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में लिखा या बेज कलर में या येलो कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, जब उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्टों की नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजार 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए जी। वेलकम है उन समाधों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे जनाब आपको ये भी बताते चलें कि ऐप के अलावा हमें सुनने के और भी तरीके हैं आपके पास। मसलन मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जांपल जनाब कैसे कि अगर आप सुनना चाहते हैं हमें अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे तो फिर जनाब आप क्या करेंगे, आप live.radiofaza.co.uk एड्रेस बार में यानी अपने अपने ब्राउजर में लिखेंगे और उसके बाद आप सिंपली प्ले करेंगे हमारी वेबसाइट को तो जनाब ये आवाज़ ठहरेगी आपकी समातों की नज़र गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए। इसके अलावा आपको बताते चले हमारी बाकी जितनी ट्रांसमिशन है, हमारी पॉडकास्ट है, रील्स हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए, हमारे इवेंट्स के बारे में जानने के लिए जहाँ आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट radiofaza.co.uk। अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेजेस दीजिए और एहसास दिलाइए अपने होने का।

जनाब हल्की सी एक बार फिर से मैं आपको मौसम की जानकारी देता चलूं। इस पर जनाब अभी तक नॉटिंगम शायर का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल जी बिल्कुल अवेलेबल है, 18-22% चांसेस हैं हल्की फुल्की बारिश के, लेकिन आपको शाम 4 बजे थोड़ी सी बूंदा बांदी मिलेगी। अब आपने एक काम करना है सामीन, आपने क्या करना है कि इस बूंदा बांदी में से आपने ये पहचानना है कि बूंदा कौन सी और बांदी कौन सी है। एनीवे जोक्स अपार्ट, और इसके अलावा हमारी गपशप भी साथ साथ रहती है। आपको पता है गुड मॉर्निंग नॉटिंगम का खूबसूरत सफर मोटिवेट रखता है आपको, और उसके साथ साथ तंजो मजाक भी रहता है, और सबसे बड़ी बात अपने और बेगाने सब मिलते हैं इस जबरदस्त से प्लेटफॉर्म में जिसे कहने रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल्स।

रेडियो वेलकम बैक। अक्सर मैं इस ना वर्ड को थोड़ा सा चबा जाता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ, वेलकम बैक। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे लगता है जैसे मैं मलयालम में ना वलम या कुछ ना ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब है खुश आमदेद, वेलकम वेलकम वेलकम। हिंदी में तो स्वागतम हम यूज करते हैं, पंजाबी में जी आया नू हम यूज कर लेते हैं, और अरबी में मरहबा अहलन व सहलन फद्दल हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वर्ड का कुछ पता नहीं चलता कि जनाब कौन सा वर्ड है, कैसे यूज़ करता है। अब एक बड़े खूबसूरत से पर्सनैलिटी मेरे पास आई है और बड़ी जनाब थम्स अप का इशारा देके गई हैं, जो व्हाट्सएप पे नहीं आता आपके पास अक्सर थम्स अप, और उन्होंने ऐसे थम्स अप किया, इसका मतलब है कि वो शायद मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। एनीवे, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सफर है जनाब। और जैसा कि रोनाल्डो ने अपनी एक हकीकत बताई, उन्होंने कहा कि आपने दुनिया में बेस्ट नहीं होना, नहीं नहीं जी, नेवर एवर, आपने सिर्फ अपनी जात में बेस्ट होना है। जब इंसान अपनी जात में बेस्ट होता है तो उसे इस चीज का अंदाजा होता है कि मेरे पास अब जो कम्युनिटी आएगी, मेरे पास अब जो पावर आएगी, अब जो चीजें मेरे पास आएंगी वो सराउंडिंग्स में, वो ओवरऑल कभी भी किसी और के पास नहीं हो सकती। ये चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप दुनिया के तख्ते पे पैर रखने जाएंगे और फिर दार पे लटकने की किसी को कोई जल्दी भी नहीं, ना ही किसी को कोई फिक्र रहती है, ये महावरतन मैंने बात की है, कभी सोचिएगा भी मत कि ऐसी खूबसूरत जिंदगी को आप दार तक लेके जाएं। लेकिन सुनने की और सोचने की बात यह है कि जब हमारे लेजेंड्स, जिनको दिल की बीमारी भी है, जिनको ये भी है कि हमारे पास कोई वसाइल भी नहीं है, जिनको ये भी है कि हमारे पास ILR भी नहीं है, जिनको ये भी है हमारे पास तो वीज़ा भी खत्म होने वाला है, हमारे पास तो नया कॉज भी नहीं है, ये परेशानियां भी उनके साथ रहती हैं। और फिर जब हम हिम्मत हारने लगते हैं इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना बॉस, क्या कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, जाने दें, इग्नोर करिए, हर चीज़ को इग्नोर करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस चीज़ को नोटिस करें। मेरी बात पल्ले मान लीजिएगा, इग्नोर को भी कोई चीज़ नहीं होगी जब तक आप उसको नोटिस नहीं करेंगे। तो छोटी सी छोटी बातों को नोटिस करें, उसके बाद प्योरीफाई करें, छानना लगा लें। पंजाबी कहते हैं छाननी छाननी, आटा छाना जाता है, चावल छाने जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें छानी जाती हैं। प्योरीफाई करें अपनी ज़िंदगी को, प्योरीफाई करें इग्नोर मोड पर लाने से पहले। खुद सोचें कि कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कौन सी आपके पास नहीं है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको अपने पास लाने के लिए सबसे पहले नोटिस करना सीखें, छोटी से छोटी बात नोटिस करें। एक दूसरे की पर्सनैलिटी को देखें, पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो फिर नो मैटर कि आप क्या कमाते हैं, नो मैटर आप किस सवारी पे हैं, नो मैटर कि आपके साथ कौन चलता है, नो मैटर कि आप अकेले हैं या भरे मजमे में हैं, नो मैटर कि आपके रिलेटिव्स आपके साथ हैं या नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी आपके साथ होती है। एक ही नारा होता है कि आपने सिर्फ जीना है, आपने सिर्फ कामयाब होना है, अपने जो गोल्स हैं उनको लेके आगे बढ़ना है। और जो गोल्स आपके पास रहते हैं, जो गोल आप लोगों के पास रहते हैं, बच्चे, बीवी, रिलेटिव, फैमिली, इन सबको आगे लेके जाने की जो लगन, जो चुभन आप में होती है, वो चीज़ नोटिस करने के काबिल होती है। सामीन, जब हम नोटिस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक इग्नोर करने की पावर आती है। मैं इग्नोर करने की पावर कहता हूँ क्योंकि इग्नोर करना किसी चीज़ को, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। लोग इग्नोर नहीं कर पाते, और जो लोग किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते वो बेसिकली खुद सिला रहमी का शिकार होते हैं, जिसको कहते हैं ना खुद तरसी, अपने ऊपर तरस खाना कि यार मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ। कभी भी ये ना सोचें, मैं आपके अंदर जब आपकी उंगली पॉइंट करेगी ना आपके कॉन्शियस को, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अब आपके पास जो जिंदगी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अरे टाइम तो बहुत थोड़ा सा रह चुका है मेरे और आपके साथ का, लेकिन एक खूबसूरत सी बात क्या है कि मेरे कुछ 90s के पॉपुलर सॉन्ग मेरे पास मौजूद थे जिनको मैंने छोटी सी रिमिक्स की क्वालिटी में आपके लिए रखा था, लेकिन बातें इतनी हुई कि ट्रैक प्ले नहीं किया जा सका और आप लोग भी मेरे साथ महवे गुफ्तगु थे। सो 0115710971 ये नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हैं अपनी विशेष राय, अपना जो शो के अजहार है, शो के इजहार वो मेरे साथ लाजमी कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या परखते हैं, आप क्या समझते हैं, ये ट्रैक्स जो है वो ठीक है या नहीं, बताइएगा जरूर।

0: जिन्हें जिस जिसका चैन लिया है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नहीं लिया वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो ना खूबसूरत ट्रैक्स आपके साथ मौजूद थे, हल्के से पुराने हैं, ताकि मैंने कहा कुछ नए ट्रैक्स के साथ साथ कुछ पुराना सरगम भी आपकी समातों की नजर किया जाए। जनाब एक इम्पोर्टेंट सी अनाउंसमेंट है जनाब, एंटरटेनमेंट और मुहब्बी वतनी से जो लोग सरशार होना चाहते हैं, मोहब्बत से, अखुवत से, भाईचारे से, नॉटिंगम के अंदर जनाब पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम लेकर आ रहा है एक्सेलसियर नवाब में 79th इंडिपेंडेंस डे के मौका पर सनम मारवी की जबरदस्ती लाइव परफॉर्मेंस, उसके साथ है हसीब हेज एंड मुकी। जनाब जेड के इवेंट्स और रेडियो फजा जनाब मीडिया पार्टनर भी हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले 6 PM पे इवेंट शुरू हो जाएगा और 14 अगस्त यानी फ्राइडे को। आपको ये बताएं कि मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, अभी रब्ता कीजिए 07802988615 07152999। जनाब अभी टिकट्स अपने बुक कीजिए और जो VIP टिकट्स हैं वो बिल्कुल ही जनाब सोल्ड आउट लेवल पे जा चुके हैं। जल्दी कीजिए, रब्ता कीजिए या फिर विजिट कीजिए excelsiornawab.co.uk, वहाँ पे मिलेगा जनाब आपको एक बार कोड, उसको स्कैन कीजिए और फिर आपने टिकट्स आज ही बुक कर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM, बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा मज़ा और रंग बिरंगे जनाब जबरदस्त स्टॉल्स भी होंगे, शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, झंडे भी खरीदेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड इट्स कमर्शियल टाइम।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 01159298484 या 07720210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, hello hello hello, a very beautiful, exciting plus breezy morning sabhi sunne wale listeners ke liye. Dear listeners, main hoon aap sabhi ki host RJ Zainab Fatima aur aap sun rahe hain aapka apna pasandeeda show Diva Dialogue. जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे. तो लिसनर्स, जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 एफएम ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ मिलता है एंटरटेनमेंट का फुल डोज. सो पूरी कोशिश की जाती है कि आने वाले इन दो घंटों को बनाया जाए आपकी जिंदगी के लिए खूबसूरत, मीनिंगफुल और साथ ही साथ प्रोडक्टिव. लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से नए दिन का आगाज हम और आप मिलकर एक साथ. सुनेंगे कुछ आपकी कहानियां और साथ ही साथ कुछ सुनाएंगे आपको अपनी दास्तान शो में. और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत होगी और तमाम तरह टॉपिक्स वही शामिल किए जाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं. इसके साथ साथ इंतजार किस बात का है, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطे का नंबर. कि वो नंबर है जिसके थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मुझसे वो तमाम तरह बातें शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना. और इसके अलावा आप इस नंबर के थ्रू मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं या फिर आप किन मौजूदात पर गुफ्तगु करना चाहते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि शो में वही तमाम तरह चीज़ें शामिल करें जो आप सुनना चाहते हैं. और साथ ही साथ अगर आपको है किसी भी स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक पसंद तो वो भी बता सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम तर क्यूरीज को फुलफिल करें. इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन और साथ ही इस नंबर को करिए डायल. अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज दीजिए, नहीं तो ये भी बता दीजिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहां से हमें ट्यून कर रहे हैं. और आज के दिन के हवाले से आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आज क्या करने वाले हैं, वो तमाम तरह चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं. पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको दूँ एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस. लिसनर्स, ये तो हो गया वो तरीका जिससे आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब जरा बात करते हैं कि किस तरह से आप इस खूबसूरत सी आवाज़ को ट्यून कर सकते हैं. www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम की इस फैमिली का हिस्सा. और रेडियो फजा 97.1 एफएम पर होने वाले तमाम तर इवेंट से मुतल्लिक किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको बआसानी इस वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है. और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला. आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बना सकते हैं ताकि आप ट्यून करते रहें ऐसी ही खूबसूरत सी आवाज़ों को. आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी

इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिंपली अगर आप हैं एप्पल यूज़र या फिर हैं एंड्रॉयड यूज़र, सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर। वहाँ जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो डियर लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और बताते रहें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। सो डियर, स्टार्ट करते हैं आज का ये खूबसूरत सा डे एंड खूबसूरत सा शो। तो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, जिंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे, और अगर कहीं मगन नहीं होंगे तो इस कश्मकश में ज़रूर होंगे कि किस तरह से आज का ये दिन स्टार्ट किया जाए, ना सिर्फ स्टार्ट किया जाए बल्कि इसको बनाया जाए मीनिंगफुल। आई नो, जब भी सुबह हम उठते हैं तो पहले जो 5 से 6 मिनट्स होते हैं वो इसी सोच में गुजर जाते हैं कि अच्छा उठा जाए या ना उठा जाए। समटाइम्स दिल करता है कि वक्त यहीं थम जाए और हम मज़ीद थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन उठना तो पड़ता है क्योंकि एक खूबसूरत सा दिन स्टार्ट करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पहला स्टेप उठाएँ। सो डियर लिसनर्स, अगर अभी तक आपने पहला वो स्टेप नहीं उठाया तो आइए मिलकर एक साथ उठाते हैं। अभी उठिए, बिस्तर को छोड़ दीजिए, बालकनी में आए, कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ लें और बाहर का ये खूबसूरत सा व्यू और नज़ारा एंजॉय करें। और साथ ही साथ जब तक ये कप आपका कंप्लीट होता है, तब तक आप आज के दिन के हवाले से भी थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, सोच लें कि अच्छा आज का दिन किस तरह से यूटिलाइज करना है, ना सिर्फ यूटिलाइज करना है बल्कि वो क्या ऐसे प्लानिंग की जाए जिसमें हम अपने काम को भी वक्त दे सकें, आराम भी कर सकें और साथ ही साथ फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकें। सो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसी चीज़ का नाम है कि आप हर एक चीज़ को साथ लेके चलें। बाज़ुकात बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो बस ज़िंदगी के एक ही पहलू को पकड़ लेते हैं एंड देन वो ये सोचते हैं कि बस मुझे इसमें प्रो लेवल तक जाना है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कामयाब इंसान वही होता है जिसकी ज़िंदगी का हर पहलू कामयाब हो, ना कि सिर्फ एक पहलू। सो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप बन जाएं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, लेकिन आपके पास इतना वक्त ही ना हो कि आप उस सक्सेस को अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ इंजॉय कर सके। सो आई डोंट थिंक सो कि उस कामयाबी का कोई फ़ायदा है। सो हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को म्याना रवि के साथ इक्वली बैलेंस करके ही चलना ज़िंदगी का नाम है। गुफ्तगू का सिलसिला तो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। शो में बहुत सारी गपशप करेंगे और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें, साथ ही साथ कुछ ब्यूटी टिप्स एंड देन फिर आ जाते हैं किचन की जानिब, जहाँ हम बनाएंगे चटपटे से पकवान। सो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ रहना है अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, क्योंकि ये 2 घंटे बनने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल। सो शो को आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू का सिलसिला, लेकिन फिलहाल के लिए अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो अभी हमें बढ़ना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करते रहें। और हाँ, इस कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं या आज हम किस टॉपिक पर बात करें। सो ब्रेक के बाद वही तमाम चीज़ें शो में शामिल की जाएंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदी तीवा डायलॉग में। और मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। सो दी लिसनर्स, ये सिंपल सा

सो डियर लिसनर्स, मैं ये कह रही थी कि ये जो सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है वो मैंने इसलिए दिया कि हो सकता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हों जिन्होंने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हो, सो उन सभी के लिए. सो डियर लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं आज का शो. सो ज़रा बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी मोटिवेशन की. जैसा कि आप सभी को है मालूम कि ज़िंदगी में अक्सर एक ऐसा पॉइंट आता है हम सभी की लाइफ में जब हम बहुत ही ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं. हम ऐसा सोचते हैं कि बस हमने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, हमने तो बहुत कुछ किया है लेकिन हमें उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम अपने सपनों से पीछे हटने लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते. होता है ना, आई एम श्योर आप सभी की ज़िंदगी में भी होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी चीज़ के लिए बहुत दिल से सोचा हो, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट की हो, लेकिन ऑन द एंड वो उस तरह से ना हो तो फिर हम सब हो जाते हैं कहीं ना कहीं मायूस. लेकिन अगर आज आप भी किसी से इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं सो ये सेगमेंट है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल कोट लेकर आई हूँ जो कि आपको इस तरह के सिचुएशन में जहाँ आप बहुत सारी एफर्ट्स तो पुट करते हैं, बहुत सारा इनपुट डालते हैं लेकिन आपको आपकी मर्जी का आउटपुट नहीं मिलता. सो ये कोट है आप सभी के लिए. वेल, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा. सो शेयर करती हूँ ये आपसे. सो लिसनर्स, आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई बड़ा स्टेप लेने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक फियर आ जाता है, क्या मैं ये कर सकूंगा या कर सकूंगी, और अगर मैं फेल हो गई या मैं इसको उस तरह से ना कर सकी तो फिर आगे क्या होगा. और इस डर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन का एक बहुत ही अच्छा सा कोट है. सो वो आपसे शेयर करती हूँ. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. So, इस एक सेंटेंस में काफ़ी गहरी बात छुपी हुई है. आइए ज़रा इसको डिस्क्राइब करते हैं.

बेसिकली होता क्या है कि हम में से अक्सर लोग अपने ख्वाब इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने डर के साथ जी रहे होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। सो माई डियर लिसनर्स, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान कभी भी नहीं होता बल्कि हमारे अपने अंदर का डर होता है। डर फील होने का, डर लोगों के ताने सुनने का और साथ ही साथ अपनी जिंदगी का दूसरों के साथ कंपैरिजन करने का। सो हम अपनी पूरी जिंदगी इसी डर के साथ इस तरह से गुजार रहे होते हैं लेकिन उन ख्वाबों को वक्त नहीं देते जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये सोच कर के मे बी इफ आई शुड ट्राई तो हो सकता है ये ना हो और अगर नहीं होगा तो देन आगे क्या होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप अपने अंदर के डर को इस सोच की वजह से एक साथ रखी रखते हैं तो आप अपनी असली कैपेबिलिटीज को डाउट में डाल देते हैं। सो कहा जाता है कि डर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है, एक वहम होता है। सो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, आपको ये रियलाइज करवाता है कि अच्छा अगर ये चीज नहीं होती तो आगे क्या होगा। सो इसके लिए वैसे तो दो तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आज हम इसी डर को कम करेंगे और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप कोई काम करते हो और वो उस तरह से नहीं होता तो उसके आगे आपको क्या करना चाहिए। सो लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक आप जो ऐसे लोग हैं, हम सब में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो खुद पर डाउट करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों से कमतर समझते हैं। सो इसका सलूशन भी है मेरे पास, लेकिन फ़िलहाल के लिए सुनते हैं एक अच्छा सा म्यूज़िकल सा ट्रैक क्योंकि मैं देख रही हूँ माहौल हो चुका है काफ़ी ज़्यादा सीरियस। सो इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं बनाना हमने। सो सुनते हैं एक अच्छा सा ट्रैक। ये ट्रैक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है सो इसलिए मैं इसको शो में शामिल कर रही हूँ। वेल, देखते हैं आपको ये कैसा लगता है। इस ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात। अगेन कंटिन्यू करेंगे यहीं से।

चलिए तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? अच्छा, ये ट्रैक मेरा बचपन का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। सो जब भी मैं ये ट्रैक सुनती हूँ तो एक अलग सा एहसास होता है और थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं वापस से उस टाइम में चली गई हूँ जहाँ फर्स्ट टाइम मैंने इस ट्रैक को सुना था। सो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सडनली जब आप कोई भी किसी तरह का म्यूज़िक सुने तो उस म्यूज़िक के साथ ही आप उस सिनेरियो में खो जाएं जहाँ आपने फर्स्ट टाइम उस म्यूज़िक को सुना था? सो अगर इस तरह का कुछ आपके साथ भी होता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा फील होता है। 0115710971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कुछ भी बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। तो जी लिसनर्स, डीवा डायलॉग में दोबारा से कंटिन्यू करते हैं उसी फर्स्ट कोड को जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि अगर इस तरह का सिनेरियो या फिर सिचुएशन आप सभी की ज़िंदगी में से किसी की ज़िंदगी में हो तो क्या करना चाहिए। सो जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है कि आपने अपनी तमाम तर तवज्जा एक ही मिशन पर या एक गोल पर रखी है कि अच्छा अगर ये हो जाएगा तो ज़िंदगी तो बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी, या फिर ये मुकम्मल होगा तो ये हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा। सो आई नो तभी आपको इस चीज़ का डर होता है कि अच्छा अगर ये काम उस तरह से ना हुआ तो आफ्टर रिजल्ट क्या होगा। आपको इस चीज़ से भी डर लग रहा होता है कि कहीं आपका दिल टूट ना जाए ये सोच कर कि ओह जो सब मैंने सोचा था, असल ज़िंदगी में तो चीज़ें उससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, काफ़ी उल्ट हैं। सो इसी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हमेशा आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ड्रीम जॉब है और आप वो करना चाहते हैं और आपके पास जस्ट इन केस ऐसा हो जाता है कि आपको वो नहीं मिल पाती तो आई नो आपको बहुत बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा, ज़िंदगी बुरी लगने लगेगी और ना उम्मीदी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि फर्स्टली आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड देन इफ मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सो आपको फिर इतना मसला नहीं होता। अगर आपका एक प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो आप फिर दूसरे की जाने बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका लाइफ में सिर्फ एक ही प्लान हो कि आपको डॉक्टर बनना है और इसके अलावा आपका माइंड बस कहे कि नहीं डॉक्टर ही बनूंगा, अगर तो डॉक्टर नहीं बन सका तो कुछ भी नहीं बनूंगा, तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना गोल अचीव ना कर सको तो आप डीमोटिवेट हो जाओ, ज़िंदगी आपको काफ़ी हद तक मायूस कर दे। तो ये है हमारे इस फर्स्ट कोड का सोल्यूशन कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हो आप सभी के साथ तो आपके पास एक अदद बैकअप प्लान होना चाहिए। बाकी लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू हैव नो आइडिया कि अगले आने वाले मोमेंट में क्या हो जाए। सो बस जिंदगी को इसी तरह से एंजॉय करते रहें और कभी भी मायूस मत हुआ करें। अगर कुछ बुरा हो भी जाता है तो यही सोचा करें कि इसमें भी आप सभी के लिए कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई अच्छी बात छुपी हुई है। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही आप हमसे अपनी लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर कर सकते हैं कि अच्छा आपकी लाइफ के ओरिजिनल गोल्स क्या थे और आज आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। सो अगर मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक गोल शेयर करूँ, सो माय फर्स्ट प्लान इज़ कि मैं ICS करूँगी और IT डिपार्टमेंट में जाऊँगी, बट जस्ट इन केस मैं उसको नहीं परस्यू कर सकी सो मैंने एक बैकअप प्लान रखा और मैं चली गई एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की जाने। सो आज मैं एज अ HR पढ़ रही हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्लान था वो इतना अच्छा नहीं था, ये ज़्यादा अच्छा है। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो हमेशा ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द गॉड्स प्लान। वेल इसी बात के साथ शो में शामिल करते हैं एक अदद और अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड अगेन स्टार्ट करेंगे और गपशप।

जी तो लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड कोट. सो फर्स्ट कोट की तरह सेकंड कोट भी है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल, लेकिन है थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा डिफरेंट. सो आवर सेकंड कोट सेज, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप. सो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रफ्तार कितनी आहिस्ता रखते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बस रुकते नहीं हैं. सो हम सभी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम रातों रात कामयाबी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सक्सेस फौरन से आ जाए. लेकिन माय डियर लिसनर्स, असली कामयाबी स्पीड का नाम नहीं है, बल्कि असली तो कामयाबी है कंसिस्टेंसी का नाम. सो छोटा सा कदम जो आप रोज़ाना उठाते हैं अपने किसी गोल की जानिब, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको करीब कर देता है अपने उस गोल से. अगर आप रोज थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन लाखों लोगों से आगे हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और बस सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए और जिंदगी खुद ब खुद ही कामयाब हो जाए. सो पहाड़ पर चढ़ते वक्त रफ्तार हमेशा से आहिस्ता ही होती है, लेकिन जो शख्स बिना रुके चलता रहता है, आखिरकार चोटी की बुलंदी पर भी वही खड़ा होता है. So don't compare your chapter 1 with someone else's chapter 20. अपनी स्पीड से चलते रहें, बस रुकिएगा नहीं, and you will see कि एक दिन आपके पास वो सभी चीज़ें होंगी जिनके लिए आप कभी ख्वाब देखा करते थे. So अगर मैं आपको अपनी example दूँ, तो there was a time in my life जब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम के जैसे थी, जैसे बाइंग अ न्यू फोन, बाइंग न्यू क्लॉथ्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि हम सब उस वक्त छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, और हमें लगता है कि ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. बट ट्रस्ट मी हनी, टाइम के साथ साथ इंसान वो सभी चीज़ें अचीव कर लेता है जो कभी उसका ख्वाब होती हैं. बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें. सो माय लवली डिवास, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा सेकंड कोट?

सो डियर लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात के साथ वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं डीवा डायलॉग में इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर. तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 एफएम के संग इसी तरह से जुड़े रहें, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ आप सभी को कहाँ पर टी व डायलॉग में और अपनी फेवरेट आर्टिस्ट ज़ैनब फातिमा के साथ। सोते लिसनर्स, इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको और मुझे हो गया है साथ में एक घंटा कंप्लीट। कैन यू इमेजिन के कितनी तेज़ी से वक्त गुजर गया। और ऐसा ही होता है कि जब आप किसी के साथ दिली तौर पर अटैच हों या फिर गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी जा रही हो, तो बातें करते करते करते बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि अचानक से घंटे मिनट्स में और मिनट सेकंड्स में बदल जाते हैं। और फिर पता तब चलता है कि जब सारा वक्त गुजर जाता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, सो वो और मैं हम किस तरह से फ्रेंड बने थे, आइए आपके साथ उसकी स्टोरी शेयर करती हूँ। सो बेसिकली हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो कि एट दैट टाइम मेरी दोस्त हुआ करती थी। सो वो मेरी दोस्त थी और हम दोनों अच्छे दोस्त थे और सब कुछ काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथली चल रहा था कि बीच में अचानक से जो अब मेरी करंटली फ्रेंड है वो मेरी उस दोस्त की दोस्त थी। तो एक से दो मरतबा इसी तरह से होता है ना, आप सभी के साथ भी होता होगा कि दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, फिर इसी तरह से थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो जाती है और ऐसे बातें करते करते आपकी वाइब मैच हो जाती है और अगेन गुफ्तगू मज़ीद बढ़ती चली जाती है। बस कुछ इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ गया, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत स्टार्ट होगी, अगेन फिर बातें होते होते काफ़ी ज़्यादा हो गई। और फिर लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आया कि जो मेरी असल दोस्त थी उसके साथ तो मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो हमारी सेकंड फ्रेंड थी इसके साथ मेरी इस कदर वाइब मैच होगी कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और हमेशा उस दिन से लेके आज तक उसने मुझे सपोर्ट किया है, ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे वो काम बहुत ही बुरा क्यों ना हो, सब मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो वो दोस्त है वो हमेशा से मेरे साथ रहती है, मुझे सपोर्ट करती है और मुझे मालूम होता है कि ये मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी और ये मेरी विल पावर बनेगी। सो आज का ये शो, ये सेगमेंट करते हैं अपने सभी उन दोस्तों के नाम जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं और हमारे लिए हैं बहुत ही ज़्यादा खास। सो आप सबके लिए दोस्ती का मतलब क्या होता है, टेल मी। सो मेरे नज़दीक दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप डेली बेसिस पर मिलें, डेली बेसिस पर हैंगआउट्स हों, डेली कॉन्वर्सेशंस हों, लेट नाइट टॉक्स हों। फॉर मी दोस्ती इज़ लाइक कि आपकी भले ही बातचीत ना हो, अक्सर मुलाकात ना हो, लेकिन जब भी कभी आपको किसी की ज़रूरत पड़े या आप इस तरह से महसूस करें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, कौन आपको सपोर्ट करेगा, तो वो हमेशा आपके लिए खड़े हों और हमेशा आपको सपोर्ट करें। सो मैं इस चीज़ को दोस्ती समझती हूँ, मैं इसी चीज़ को दोस्ती मानती हूँ कि जो आपके मुश्किल वक्त में आपका सहारा बने।

इस बात के ऊपर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात सुनी थी, वो ये थी कि एक मौलाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बहुत ही मशहूर ज़माना कोट है कि इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं होता कि जिसके पास दौलत नहीं होती, जिसके पास शोहरत नहीं होती, जिसके पास माल नहीं होता, लेकिन इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो होता है कि जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। सो आज ही आप सभी भी टैग करें अपने उन सभी दोस्तों को जो कि आपकी ज़िंदगी में हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और वो आपसे हसद नहीं करते, वो आपसे जलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं।

कैसे तो लिसनर्स, क्या कभी आप सभी ने गौर किया कि दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत सा कीमती सा रिश्ता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहां आप दूसरे के साथ ब्लड से रिलेट नहीं कर रहे होते, आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन दो स्ट्रेंजर्स अचानक से एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मुखलिस हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं। वेल, जहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप्स की, तो यहीं पे बात की जाती है ज़रा लड़कियों के और लड़कों की दोस्ती की। मैंने जितना अपनी पर्सनल ज़िंदगी में देखा है तो इन दोनों की ही फ्रेंडशिप में ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, मैं सबको नहीं ये कह रही, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जो लड़कियां दोस्ती होती हैं, यानी कि फीमेल फ्रेंडशिप्स, उनमें जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली। तो कुछ ऐसी दोस्ती भी होती हैं जो आपके साथ होती हैं, ऊपर से यही कहती हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो आपकी खुशी में खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो आपसे हसद कर रही होती हैं, आपसे जल रही होती हैं और वो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकती। और साथ ही साथ फिर कुछ इस तरह की भी फ्रेंडशिप्स आती हैं जो कि वो आपसे जलती नहीं है, हसद नहीं करती, लेकिन हमेशा आपको डी वैल्यू फील करवाते हैं, हमेशा आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप दूसरों से कमतर हो, या आप में तो कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, या फिर ये आप क्या कर रही हो, ये कैसे कर रही हो, ओह ये कौन करता है, ऐसे कौन खाता है, ब्ला ब्ला ब्ला एंड समथिंग लाइक दैट। इस तरह का बहुत सारा स्टफ होता है जो कि वो आपके साथ ऐसे ऐसे बात करते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद कि मुझ में वो तमाम तर क्वालिटीज़ नहीं हैं जो अच्छे लोगों में होती हैं,

सो बेसिकली ये दो तरह के जेलसी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ना सिर्फ फील नहीं होते बल्कि आपको ऐसा फील कराते हैं कि यू शुड डाउट ऑन योर सेल्फ, जिसकी वजह से आप ना तो कोई नया काम करते हैं ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और हमेशा खुद को अपने दोस्तों से कमतर समझते हैं। सो ट्रस्ट मी हनीज, कभी भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती आपने नहीं रखनी जो कि आपको ये फील कराएं कि आप दूसरों से कमतर हैं या फिर आप उस तरह से खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि सर्कल बहुत मैटर करता है इंसान की निजी ज़िंदगी में। सो हमेशा सोच समझ के आपने किसी से भी दोस्ती करनी है, क्योंकि जब भी कभी आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं सो आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि आपका ये फ्रेंड किस टाइप का है, किस कैटेगरी के है। सो लोगों को जांचना परखना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है और अगर इस मुश्किल ज़िंदगी में आप अपना सर्कल भी कुछ इस तरह से बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाती है। सो ये तो बात होगी हमारी फ़ीमेल फ्रेंडशिप्स की, अब ज़रा बात करते हैं मेल फ्रेंडशिप्स की तरफ। लेकिन उससे पहले शो में शामिल करते हैं एक अदद अच्छा सा म्यूज़िकल ट्रैक। सो जी लिसनर्स, ये ट्रैक हमारे एक लिसनर ने हमें अभी अभी रिकमेंड किया है, उनका कहना है कि प्लीज़ इसको शो में शामिल किया जाए। सो जैसा कि आप सभी को है मालूम कि रिवर डायलॉग में हम वो तमाम तर म्यूज़िक ऐड करते हैं जो कि हमारे लिसनर्स दिली तौर पर सुनना चाहते हैं। सो जी क्यों नहीं, ज़रूर अभी भी हम शामिल करेंगे वही ट्रैक। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड अगेन कंटिन्यू करेंगे इस खूबसूरत से टॉपिक को।

सो ये तो लिसनर्स, अब जरा बात करते हैं कि मेल फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं। सो मेल फ्रेंडशिप्स होती हैं उनमें और फीमेल फ्रेंडशिप्स में एक ह्यूज डिफरेंस होता है जो मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में देखा है। वेल आई डोंट नो कि अब आप सब की ज़िंदगी में किस तरह की फ्रेंडशिप्स हैं, लेकिन फॉर मी मेल फ्रेंडशिप इज़ मोर बेटर देन अ फीमेल फ्रेंडशिप, क्योंकि जो आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी आपसे जेलस नहीं होते, वो कभी आपको एज अ कंपेटिटर नहीं देखते, बल्कि मैंने ये देखा है कि जो लड़के आपस में दोस्त होते हैं वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्त को दोस्त से कम और भाई ज़्यादा समझते हैं। उनके अंदर हसद का फैक्टर भी नहीं होता, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे की गमी में गम करना, साथ ही साथ एक दूसरे की मदद करना, कोई नया काम स्टार्ट करना है तो मिलजुल कर करना, एक दूसरे के साथ काम कराना, लेट नाइट मिलना जुलना और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेल फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा दिखाई देती हैं। अच्छा, आप सभी ने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो फीमेल फ्रेंडशिप्स होती हैं, अच्छा

होती है वो खुले दिल के होते हैं, और जो हम फीमेल्स हैं हमारा दिल बहुत ही छोटा होता है, सो हम बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा हसद करते हैं और बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। सो लिसनर्स, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले कोई नया दोस्त बनाने का, तो हमेशा सोच समझ के दोस्त बनाया करें, बातचीत सबसे किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सोशलाइज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आया आप जिससे बात कर रही हैं क्या वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, क्या वो आपको उस तरह से देख रहा है जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं, या फिर कहीं वो आपको एज अ कंपेटिटर तो नहीं देख रहा। सो ऑलवेज मेक क्वालिटी फ्रेंड्स नॉट अ क्वांटिटी फ्रेंड। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो आपके बचपन के होते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। सो मैंने हमेशा वही दोस्त बनाए हैं जो मेरे मुश्किल वक्त में काम आए, और जहाँ कहीं कोई मेरे मुश्किल वक्त में काम नहीं आता तो बस मैं उसको परख लेती हूँ उसी टाइम पे। वो उर्दू के एक बहुत ही पुराने शायर हैं, उनकी एक कहावत है। सो अब ये बात हो रही थी तो वो सिचुएशन से काफ़ी रिलेट कर रही है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी आपसे शेयर किया जाए। सो उनका कहना कुछ यूँ था कि दुनिया ते जो कम ना आए औखे सौखे वेले, उस बेफैजी संगी गोलो बेहतर यार अकेले। सो इससे अच्छा है ना कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, इनकरेज नहीं कर रहा, तो अच्छा है ना कि आप अकेले ही रह लो, क्योंकि दुनिया में हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। तो पता नहीं क्यों लोग इस दुनिया में रहने के लिए आरजी सहारों को ढूंढते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा है कि लोगों के अंदर इस चीज़ का फियर होता है कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं, वो इस डर की वजह से ऐसे लोगों में, ऐसे सर्कल में उठते बैठते हैं जो उनको कभी भी इनकरेज नहीं करता, कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं करता। सो ट्रस्ट मी हनी, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लो। ट्रस्ट मी, अकेले बहुत मज़ा आता है। सो मैं काफ़ी सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। मुझे ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है, आप अकेले कहीं भी घूम सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें देख सकते हैं और ज़िंदगी को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अब यहाँ मेरा ये कहने का मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आप कोई दोस्त ही ना बनाओ, दोस्त बनाओ, लेकिन हमेशा क्वालिटी वाइज अच्छे दोस्त बनाओ। सर्कल को स्मॉल रखो, लिमिटेड रखो, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और कोशिश यही करो कि नए दोस्त कम ही बनाओ, क्योंकि दोस्त पुराने ही हमेशा अच्छे होते हैं। वेल लिसनर, इसी खूबसूरत सी बात के साथ एक अदद और सॉन्ग शो में शामिल करती हूँ। सो बताइए कि मुझे किस तरह का म्यूज़िक आपको सुनना है या आप सुनना चाहते हैं, तो मैं वही तमाम तर गाने शो में शामिल करूँगी। सो फिलहाल के लिए तो मैं अपनी ही पसंद का कोई गाना शामिल कर रही हूँ, तो आप सुनकर मुझे बताइएगा कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी इमोशनल भी। मैं तो सुनते सुनते बीच में ही खो गई थी एंड सडनली मुझे एहसास हुआ कि मैं शो कर रही हूँ, सो वापस से शो को कंटिन्यू भी करना है। सो कुछ इस तरह के गाने होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोइट्रिक होते हैं कि जब हम उनके लिरिक्स सुनते हैं तो बस हम उनके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं एंड देन सोचते सोचते सोचते हम अपने ही ख्यालों की एक दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन फिर वापस आना पड़ता है और काम काज करने पड़ते हैं, जिस तरह से मुझे वापस आकर शो करना पड़ रहा है। वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे से गाने शो में शामिल किया जाए तो आप मुझे अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं किस तरह से। 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो मैं वो तमाम तरह गाने शो में ना सिर्फ शामिल करूँगी बल्कि आप अपने किसी प्यारे से चाहने वाले को कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं, वो भी लाजमी शो में शामिल करूँगी। और इसके साथ ही आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करते करते सुन रहे हैं। लल हमारे वो सभी लिसनर जो कि ड्राइव करते करते हमें सुनना चाहते हैं, तो आप सभी सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर इस वक्त आप ऑफिस में मौजूद हैं या फिर ऑफिस से एक छोटा सा ब्रेक लेकर बाहर निकलने लगे हैं, सो बी सेफ, बी केयरफुल और आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे होगी मुलाकात कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें

वेलकम बैक सभी सुनती हुई समातों को एक बार फिर से टीवा डायलॉग में खुश आमदीद। और जैसा कि है अब स्टार्ट हो चुका हमारे शो का टीवा डायलॉग का लास्ट सेगमेंट। सो करेंगे बहुत सारी बातें जैसा कि हमने थ्रू आउट द होल शो की हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि द स्पाइस किचन की जाने पढ़ने का। लिसनर्स, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार, आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा आज का सेगमेंट। और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी फ्यूजनल रेसिपीज। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई न्यू रेसिपी हम ट्राई करें, कोई ऐसी रेसिपी जो कि आपने पहले ट्राई ना की हो, या फिर अगर की हो तो हम उसको डिफरेंट टेक्निक से बनाएं जो आपको खाने में भी अच्छी लगे और साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट्स बिल्कुल भी पुट ना करने पड़े, ताकि आप कम वक्त में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस खाना बना सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए शेयर करती हूँ आपके साथ आज की रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक इंडियन रेसिपी विद अ डिफरेंट फ्यूजनल एंड डिफरेंट स्टाइल। सो आज हम बनाएंगे स्मोक्ड बटर चिकन मैक्रोनी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि बटर चिकन तो बहुत बार खाया है, लेकिन आज हम बटर चिकन मैक्रोनी जो बना रही हैं, यानी कि हमने थोड़ा सा देसी थोड़ा सा वेस्टर्न दोनों का टच रखा है और इस रेसिपी को बनाया है काफ़ी यूनिक, काफ़ी फ्यूजनल। वेल ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी लगती है। सो सबसे पहले अगर आप कोई काम कर रही हैं तो वो काम छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। सो डियर लिसनर्स, जितनी देर में हमारी डिवाइस ढूंढती हैं कोई अच्छी सी नोटबुक कॉपी पेंसिल, तब तक एक अदद अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक सुन लेते हैं और फिर इस ट्रैक से वापसी पर रेसिपी को करेंगे कॉन्टिन्यू।

लिसनर, स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो आपको है दरकार मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन मैरिनेशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। सो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून थिक योगर्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। और अब बात करते हैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स की जो हम यूज़ करेंगे सॉस बनाने के लिए। सो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 लार्ज चॉप्ड अनियन, 2 लार्ज चॉप्ड टोमेटोज, 10 कैशियो नट्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 कप फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून ड्राइड फिग लीव्स जिसे हम कसूरी मेथी कहते हैं। और अब जरा बात करते हैं अपने फाइनल इंग्रेडिएंट्स की। सो द फाइनल इंग्रेडिएंट इज 2 कप्स ड्राइड मैक्रोनी, 1 पीस ऑफ नेचुरल चारकोल एंड 1 टीस्पून घी। सो द लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनसे हम बनाएंगे मज़ेदार सा स्मोक्ड बटर चिकन मैक्रोनी। सो अगर तो कोई इंग्रेडिएंट्स हो चुका है आपसे मिस, घबराने की है कोई बात नहीं। आपको बस करना है 0115-7100971 इस नंबर पर टेक्स्ट करके आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट था जो आपसे हो गया है मिस। सो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूँगी और साथ ही साथ आपको अगेन रिपीट करवा दूँगी। वेल, इंग्रेडिएंट तो आपने नोट कर लिए होंगे, अब ज़रा आ जाते हैं किचन की जानिब। सो आइए और ज़रा चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। वेल, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं ऐड की जो कि थोड़ी मुश्किल हो और नॉर्मली हमारे घरों पर नहीं हो। हम सभी के एशियन फैमिलीज़ के घरों में ये तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। सो अब ज़रा बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की कि किस तरह से हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को ले लेंगे, ठीक है, और उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून थिक योगर्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला, लेमन जूस और सॉल्ट। तो अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स साथ ही साथ चिकन, इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के फौरन बाद रख देंगे इसे 20 से लेकर 30 मिनट्स तक। वैसे भी जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन को रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतने अच्छे से मसाले आपके चिकन में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट को लाजवाब बना देंगे। सो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम हो तो आप बहुत ज़्यादा देर रख सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको हो जल्दी में आपको कुछ बनाना हो या फिर गेस्ट आ चुके हों घर पे, तो उसके लिए आप 20 से 30 मिनट इसको रख दें। 20 से 30 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की जानिब। सो इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे एक बर्तन में, साथ ही साथ नमक की कुछ क्वांटिटी शामिल करेंगे और मैक्रोनी डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। याद रखिएगा कि आपको मैक्रोनी को सिर्फ और सिर्फ 90% तक कुक करना है, क्योंकि अगर आप उसको जब बॉयल कर रहे होंगे तभी बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे, तो इससे ये होगा कि जब आप बाद में उसको बनाएंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगी और वो फिर दिखने में भी प्रेजेंटेबल नहीं लगती। एंड आई एम श्योर कि जो चीज़ दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं लगती, इंसान का कभी कभी उस चीज़ को खाने का दिल भी नहीं करता। सो बस आपने 90% तक कुक करना है और फिर पानी निकाल कर साइड पर उसे रख देना है। अब हम ले लेंगे एक पैन, पैन को कर लेंगे गरम, उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही साथ उन तमाम तर चिकन पीसेस को, और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो ये चिकन है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी हो जाए। अब
करेंगे ये कि इन चिकन पीसेस को निकाल कर साइड पर रख देंगे और इसी सेम पैन में ऐड करेंगे अनियंस, टोमेटोज, कैशो नट्स और इन्हें तब तक कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह गल जाए और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। सो ये होगी हमारी वो सॉस जिसके अंदर ऐड होगी मैक्रोनी। अब मज़ीद एक पैन ले लेंगे, ठीक है। अब इस पैन में हम बटर को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें ब्लेंडेड पेस्ट डालेंगे, साथ ही साथ हम कोरिएंडर पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और मज़ीद 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। लास्टली अब हम इन तमाम तरह इन्ग्रीडियंट्स को इस पैन में कर देंगे कम्बाइन और ऊपर से ऐड करेंगे कसूरी मेथी।

सो बस 5 से लेकर 6 मिनट तक अच्छी तरह से इन्हें मिक्सिंग अप करने के बाद आपकी के मज़ेदार से स्मोकी ग्रिल चिकन मैक्रोनी हो जाएगी तैयार, सॉरी बटर चिकन मैक्रोनी। और बस अब यह आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको खाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस एंड इट्स टोटली योर ओपिनियन। वेल लिसनर्स, ये थी आज की मज़ेदार सी स्पाइस किचन की चटपटी सी फ्यूजनल रेसिपी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी लाजमी मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ लाजमी इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और माय लवली डिवाज, अगर आप चाहती हैं कि इसी तरह की मैं फ्यूजनल मजीद और रेसिपी लेकर शो में आऊं, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकती हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि शो में वो सभी रेसिपीज़ को मैं शामिल करूं जो आपको पसंद हैं और आपको वही तमाम तर चीज़ें सिखाई जाएं। और जी लिसनर्स, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं अपना फीडबैक, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ ये भी मालूम होता है कि आपका फीडबैक कैसा है, सो हम अपने शो को डिज़ाइन करते हैं आपके अकॉर्डिंग। सो वेल लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ डीवा डायलॉग का ये जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था ये पहुंच चुका है अपने इख्तिताम के करीब। आई नो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने इतनी गुफ्तगू भी नहीं की, गपशप भी नहीं की और इतने जल्दी ये शो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या करें, वक्त की डिमांड है, क्योंकि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। सो वक्त तेज़ी से गुजरता चला जाता है। सो वेल, कोशिश तो यही थी पूरी कि आपके इन 2 घंटों को खूबसूरत बनाया जाए, मीनिंगफुल बनाया जाए और साथ ही साथ आपको मोटिवेट किया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा आज का शो तो लाजमी मुझे बताइएगा 0115710971 इस नंबर के थ्रू। सी तो लिसनर, एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM की फैमिली का हिस्सा। सॉरी, बस इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। जाते जाते एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ आज के 2 मोटिवेशनल से कोट। सो आज का जो हमारा फर्स्ट कोट है उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिला और आज के सेकंड कोट से हमें क्या सीखने को मिला।

सो माई लवली डिवास और हमारे सभी मेल लिसनर्स, आज के फर्स्ट कोट से हमें जो चीज़ सीखने को मिली वो यूँ है कि डर के आगे जीत है। आप अपने ख्वाबों को डर के साए तले नहीं छुपा सकते। एंड द सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी इज अ की। चाहे स्लो चलें लेकिन बस चलते रहें, स्टॉप होने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तब तक आप चलते रहेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। सो मेरा यकीन है कि आप अंदर से वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये बस इंसान का खुद का ही एक वहम होता है कि इंसान से ये नहीं होगा। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आई एम श्योर एंड लाजमी होता है। सो डियर लिसनर, इसी जज्बे और उम्मीद के साथ मैं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हिम्मत बढ़ाएं, खुशी रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अपने साथ साथ उन तमाम तर लोगों का भी ख्याल रखें जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है, और हो सकता है कि आपका कोई छोटा सा रॉन्ग कदम उनकी ज़िंदगी को भी अफेक्ट करे। सो आप सभी से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और नई गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी फेवरेट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त और साथ ही साथ टीवा डायलॉग को करें अलविदा। जाते जाते आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती चलती हूँ ताकि आप इसको सुनते रहें और मुझे दें इजाज़त।

0: सो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.
1: It's DJ Nick Dylan on the

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 97.1 FM के लास्ट वर्ष जी, मैं हूँ आपकी आरजे दीवान एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज।

हम उसी के साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि झलकते पड़कते ट्रैक जो है ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए, दुखी वाले ट्रैक हम शामिल नहीं करेंगे, यानी कि सैड ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल जो है वो सेंटीमेंटी नहीं बनाना। कोशिश ये रहती है कि जब आपके साथ किसी भी तरह की बात की जाए, किसी भी तरह के ट्रैक पर किए जाएँ, तो वो आपको एक अच्छी याद की तरफ लेकर जाए, ना कि पकड़ पकड़ कर वो वाली यादें लेकर आए जो आपको दुखी कर दें। तो हम इसी लिहाज से जो है ना वो सैड ट्रैक प्रोग्राम में शामिल ही नहीं करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होकर आप भी ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों। पर कहते हैं बहुत से मूवमेंट्स, बहुत से ट्रैक्स जो है ना वो बहुत से मूवमेंट्स की याद दिला देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी इंसान से पहली दफ़ा मिलते हैं ना, तो ना तो ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर आपका दोबारा कभी जाना हो, और दूसरा ये कि जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई ऐसा गाना ना सुने कि जो बाद में आप उस इंसान के बाद जब आप उस ट्रैक को सुने तो आपको वो टाइम और वो इंसान याद आए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपने मुलाकात भी करनी हो तो किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पर आपका आना जाना जो है वो इतना ज़्यादा ना हो। खैर बहुत से ट्रैक्स के पीछे बहुत सी कहानियाँ भी होती हैं, और हम लोग जब इन ट्रैक्स को सुनते हैं और माइंड फ्रेश भी होता है, जाहिर सी बात है। कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जिनको सुनकर माइंड फ्रेश हो जाता है, और कुछ ऐसे ट्रैक होते हैं जिनको सुनकर इंसान दुखी नहीं भी होता तो दुखी हो जाता है वो। जैसे अब अरिजीत सिंह की बात की जाए तो कहते हैं कि अरिजीत सिंह के गाने सुनते ही जो है ना आप दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे ना, आपको वो इंसान याद आ जाएगा जिससे आप कभी मिले ही नहीं होंगे। मतलब मैंने ये चीज़ सुनी है, बट अरिजीत सिंह के गाने बहुत मज़े के होते हैं और मुझे अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत पसंद है। ट्रैक भी बहुत मज़े मज़े के बनाते हैं, और मैं शायद की शायद वाली बात है कि उन पता नहीं वो क्या सोच के लिखते हैं, क्या करते हैं। मतलब हर ट्रैक के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, सिर्फ उन तक महदूद रहती है जिन्होंने ये ट्रैक लिखे होते हैं, जिन्होंने ये ट्रैक गाए होते हैं। खैर वेल, गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी करण ओजला की आवाज़ में, क्योंकि झलकते फड़कते ट्रैक शामिल करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। सवल स्टेडियम फजल 7.1 FM एंड ऐप, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज। मिलते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पार।

0: ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ।
1: जी हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। वेल चेक खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला टाइम के। देखे ना टाइम कितनी, अभी 3 मिनट का गाना था और 3 मिनट ऐसे गुजरे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला यार, मतलब टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। ये चीज़ मैंने भी नोट कर ली। अब ऐसे तो मुझे सब कहते थे कि टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, और मैं कहती थी नहीं नहीं इतनी जल्दी तो टाइम नहीं गुजरता, वही अपने हिसाब से खिसक खिसक के आगे जाता है। बट मुझे अब लग रहा है कि टाइम जो है ना वो वाकई में जल्दी गुजर जाता है, और टाइम हाथ से निकल भी जाए ना तो फिर वापस भी नहीं आता। हर बार उसी के साथ साथ बात करनी थी आपसे, लेकिन उससे पहले जो है ना वो एक छोटा सा ट्रैक प्ले कर देते हैं प्रोग्राम में, फिर इसके उस पार करते हैं आपसे मुलाकात। एक तो बड़ा मसला ये कि मुझे ना गाने मिलते नहीं हैं, जब ढूंढने नहीं होते तब मिल जाते हैं, और जब ढूंढने नहीं होते तब मिल जाते हैं, और जब मुझे चाहिए होते हैं ना, जब मैंने प्ले करने होते हैं प्रोग्राम में, तब उस टाइम पे जो है ना वो समझ में नहीं आता, और ना मिलते भी नहीं है फिर, या मेरे दिमाग में भी नहीं आते कि कौन सा गाना मैंने प्ले करना था, कौन सी चीज़ मैंने लगानी थी। मैं 2 घंटे का आपका मेरा टाइम होता है, उसके बाद जो मैं जितनी भी एक्टिविटी करती हूँ, जो चीज़ करती हूँ, जो गाने सुनती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करती हूँ। हर वाला ये सुनते हैं ट्रैक, उस ट्रैक उस पर आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज

सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम में मैसेजेस भी शामिल किए जाएंगे आपके अपने दरमियान। खूबसूरत सा मैसेज हम तक रिसीव हुआ कि अस्सलाम वालेकुम अली, हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान से। वालेकुम अस्सलाम अली, हमारे डेली डिस्टेंस बनने वाले हैं मुझे लग रहा है कि कल भी इनका मैसेज प्रोग्राम में रिसीव हुआ था और मैंने जो है इनकी पसंद का ट्रैक आई डोंट नो कि प्ले किया था कि नहीं किया था, ये मुझे याद नहीं है। हैवी प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। अभी जो है वो तकरीबन जब मुझे आपके साथ गपशप लगाने का मजा आने लग जाता है तो प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक खाली होने का टाइम आ जाता है और फिर वो मैं बातें भी भूलने लग जाती हूँ कि मैं कौन सी बात कर रही थी। खैर अभी जो है वो प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। साथ दीजिए का साथ होने का एहसास देकर प्रोग्राम में शामिल होकर आप अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। तरीका कार बड़ा ही आसान सा है, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबरों कीजिएगा सेफ और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और फिर से उसी तरह की अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं, यानी कि ऊपर वाले एक बड़ी खूबसूरती वोकल बॉक्स हमें दी होती है और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल में लेकर आएँ, क्योंकि इंसान के अंदर टैलेंट जो है ना वो बहुत बहुत कूट कूट के भरा होता है, लेकिन हम उसको जो है ना शो नहीं करते, हमें उसको कैरी करना नहीं आता, हमें उसको लेकर चलना नहीं आता। आई डोंट नो कि हम लोग जो है ना अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही मार लेते हैं, वरना हर बंदे में हर एक हद तक जो है ना कॉन्फिडेंस होता ही होता है। के साथ साथ अभी प्रोग्राम में पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शामिल करने का मौका मिला, लेकिन अभी जो है ना वो एक फरमाइश भी मेरे पास मौजूद था, लेकिन टाइम जो है वो एक कमर्शियल ब्रेक होने वाला, क्योंकि जब आपके साथ गपशप लगाने का मजा आ जाता है तो या तो टाइम खत्म हो जाता है या कमर्शियल ब्रेक आ जाती है, क्योंकि ये वो बाइक है वो या वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, इट्स मीन के वक्त से चलती है और वक्त जो है ना हमारे दरमियान सिर्फ 2 घंटे का होता है। तो मेरी कोशिश ही रहती है कि ना सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए बल्कि ट्रैक्स भी प्ले किए जाए ताकि आपके माइंड को स्वस्थ करने के लिए हम आपका साथ दें। अभी जो है वो प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक प्ले करने की, क्योंकि अभी कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, फिर उसके बाद रहेगी आपसे मुलाकात। शाम होकर मौजूदगी का एहसास भी दिलाइएगा, जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बीस एफ बी केयरफुल, कोई ट्रैक ब्रेक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही आपका मैसेज मेरी का कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा फ़ौरन से मैं चुपके से जो है ना उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूँगी।

है वाला अभी तक के लिए सिर्फ इतना कह देते हैं कि प्रोग्राम में हाल होने की एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पर। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनू कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HD।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं आप सुन रहे चलो आज की समसी के साथ साथ अभी मेरे पास वेलकम करने का तो टाइम मिल गया वापसी का, लेकिन एक और चेक की फरमाइशान पहुंची तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी प्ले कर ही दूं। सवाल सादी जी का साथ होने का एहसास दिलाइएगा। स्टे ट्यून रेडियो 97.1 FM एंड

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: Sorry, lady. थोड़ी ऐसे कि ये भी एरिया नजर आए और ये एरिया भी नजर आए, तो यहाँ से बड़ा फिट हो जाना है। ये रख लूं क्या कहते हैं? मौलवी इसको और काम के लिए यूज करते हैं और हम जो है
1: ये मस्जिदों में ऐलान करने के लिए काम करते
0: हैं। ये तो स्पीकर वो उसके लिए होता है ना, जो
1: ये अपने स्टैंड के लिए भी होता है, माइक स्टैंड के लिए, क्योंकि ये टेढ़ा हो जाता है।
2: Thank you.

0: हम भी देखेंगे लापसी जरा क्या ये हिलते जुलते भी देखें
1: आपको
0: है बस चार चीजें सेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिलीजियस और पॉलिटिक्स हमारा चैनल इन चारों पे बात मोनेटाइज वहाँ पे
1: हमारा
0: टॉपिक भी नहीं है बाकी ये
1: एंटरटेनमेंट के लिए
0: प्लीज
2: सब करें स्टार्ट
1: जी
2: पीने पीने

0: ये फाइनल करें फिर मैं ऑडियंस की तरफ जाऊँ।
1: इसका क्या है?
2: डबल वन
0: डबल फाइव डबल नाइन।

0: एक उसका काम हो सकता है, ये जो पिलर है ना, इसको पकड़ूंगा, इसको उठाऊंगा, इस साइड पे लगा दूंगा, दोनों बड़े अच्छे लगेंगे, क्या कहते हैं?
1: पहले उनका फ्रेम ऐसे चेक कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा वो, बिल्कुल सिंपल ना, हल्का सा पर्पल आएगा, बड़ा प्यारा लगेगा।
0: अगर वो इधर से होता फिर अच्छा लगता, असल में ये दीवार जो है ना वो और उसमें वो फर्क आ रहा
2: है। चलिए वो एडिटिंग में देख लेंगे,
1: जब आप करेंगे ना उस वक्त देखिएगा, आप जब फ्रेम काटेंगे आपको बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि ना शहबाज की इधर बैठ के की थी, बड़ा अच्छा फ्रेम आया था उसका।
0: और दूसरा भी ना रख लें।
1: अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन करके टेस्ट करें जरा, ऑडियो की ठीक आ रही है दोनों की? वो इको नहीं है
0: और इसकी चार्जिंग भी चले लगा दी है,
1: इसके ना वो बैटरी लगा देना चार्जिंग पे,
0: दोनों फुल है।
1: ऐसा आवाज ना वो पैनल से उठानी, ठीक है, ये आरजी तो
0: है,
1: चार तन रख लें,
0: चार्जर वो

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों में तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 9.
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

0: first hits.
1: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
1: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। मैं हूं आरजी मौजम और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो कार ड्राइव आल्सो ड्राइव जोन। लेट आने के लिए माजरत चाहूंगा और आपको फिर बताता चलूं कि आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो डैप लाइव फ्रॉम नॉटिंघम।

सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा उन तमाम ड्राइवर हजरात को जो इस वक्त मुझे गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं या कैब चलाते हुए सुन रहे हैं, और आपको कहना चाहूँगा हैव अ सेफ ड्राइव। और अगर आप कैब चला रहे हैं तो आपको कहना चाहूँगा कि आप एहतियात से ड्राइव किया करें। क्योंकि आपकी जान और आपके साथ जो भी बैठे हैं उनकी जान भी कीमती है, और सबसे बढ़कर आपकी जान है, और हमेशा जल्दी से बेहतर है आहिस्ता चलाना और इस तरह चलाना कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अब ये भी नहीं करना कि मेरी बात सुन के ये करें कि गाड़ी की जो मीटर की सुइयां बिल्कुल नीचे ले आएँ, बल्कि अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैं शामिल करना चाहूँगा उन तमाम अफराद को जिस वक्त मुझे रोड पर वॉक करते हुए सुन रहे हैं, और इसके अलावा जो पार्क में जॉगिंग करते हुए सुन रहे हैं उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ। और मैं ये एक आपको पैगाम देता हूँ कि ये आप जो भी हेल्दी एक्टिविटी करते हैं डेली रूटीन में, ये एक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, हेल्दी एक्टिविटी डेली करना, कोई ना कोई, चाहे आप सुबह करें शाम को करें जो भी करें, पर दिन में कोशिश किया करें कि दिन में कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी लाजमी किया करें। क्योंकि हम दिन में जो भी काम काज करते हैं, जो भी हमारे ये डेली रूटीन वर्क्स होते हैं, या जो स्टूडेंट हैं वो उनकी जो भी स्टडी होती है, पर साथ साथ हमें चाहिए कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और वैसे भी हर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप कोशिश किया करें कि डेली एक्टिविटी करें, और आपकी सेहत के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। साथ साथ

कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ बताई जाए कि जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बेहतर हो, और ये आपके फ़ायदे की चीज़ है कि अगर आपकी कंपनी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती तो ज़रूरी है कि कंपनीज़ की बाद में इंक्वायरीज या जो भी शिफ्ट्स इंचार्ज हैं उनकी बातें सुनने से बेहतर है कि एहतियात की जाए। और अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माजरत फिर कहता हूँ। और इसके अलावा जो घर से याद आया कि जो लोग अफराद मुझे इस वक्त घर से सुन रहे हैं एक कप कॉफ़ी के साथ टेरेस पर खड़े होके, तो उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ अपने शो में। और आपको बताता चलूँ कि आपके नाम भी कुछ देर बाद मैं एक सॉन्ग शामिल करूँगा। और इसके अलावा जो खवातीन मुझे इस वक्त डिनर बनाते हुए या घर के काम करते हुए या फ्री टाइम में मुझे सुन रही हैं उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ। और साथ साथ मैं शामिल करना चाहूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त मुझे फ्री टाइम में सुन रहे हैं या पार्ट टाइम शिफ्ट्स में सुन रहे हैं, उनको भी वेलकम कहता हूँ। और आपको भी कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी कोई ना कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाएगी, और आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि रेडियो सिर्फ सुनना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और आपने महसूस इस तरह किया जाता है कि आपने अपने होने का एहसास हमें ज़रूर देना है, और देने का तरीका वही पुराना है। आपने अपने तमाम पैगामात हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं, और मैसेज करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी नोट कर लीजिए 01157100971। इसके अलावा इन तमाम इलाके जिनमें हमारी आवाज़ उस तरह सही से नहीं पहुंच पा रही, तो उनके कहना चाहूँगा कि आप हमें लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk, यहाँ पे जाके आप हमें भी जस्ट सुन सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हमें हमारे जो तमाम आरजेज हैं उनके भी शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कौन सा आरजे किस नाम का आरजे किस वक्त ये शो करता है, और शो का नाम भी। इसके अलावा आप हमें एप्लीकेशन के थ्रू भी सुन सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत एंड्रॉयड और आईओएस में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम नोट कर लीजिए रेडियो फजा 97.1 FM। अच्छा, आज का मौजू बहुत धमाकेदार होने वाला है, और कुछ लोगों की बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं, और ये मौजू मैंने इस मंथ के लिहाज से चुना है। और आपको इस मंथ का पता होगा कि इस मंथ में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे, स्पेशल इवेंट्स हुए थे स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस। जो मुझे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको पता होगा कि इस मंथ उनका भी दोनों का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मैं आपको एडवांस में इंडिपेंडेंस डे मुबारक कहता हूँ। और बाकी तमाम जो भी जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, जो हमारी ज़बान समझता है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी को भी हम शामिल करेंगे, और आपका भी होने का एहसास हमें चाहिए, और आप भी हमें बताएंगे कि आपके मुल्क में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। और आज का मैं मौजू भी ये आपको बताता चलूँ कि आज का मौजू भी यही होगा कि आप लोग अपने मुल्कों में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, और यूके में त्यौहार और अपने मुल्क में त्यौहार में क्या फ़र्क होगा। और ये बात हम अगले 2 घंटों के लिए करेंगे, और आपका हमें साथ ज़रूर चाहिए होगा, और कोशिश कीजिएगा हमारा साथ आप दीजिएगा।

साथ साथ म्यूज़िक भी जारी है और म्यूज़िक का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ आपसे बातचीत भी जारी है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आप आज आपकी स्पेशल फरमाइशें भी पूरी होंगी और आपके गिले शिकवे भी दूर किए जाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा किसी के लिए कोई पैगाम के पैगाम देना है या किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है, किसी को एनिवर्सरी विश करनी है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं और हम बस आपने करना क्या है कि उसके लिए जो भी विश है वो और अपना नाम और उसका नाम जो आपके लिए जो भी आपका स्पेशल वन पर्सन है उसका नाम हमें ज़रूर भेज दीजिए। अगर आपने अपने लिए कोई फरमाइश है तो आप भी अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना पैगाम ज़रूर भेजिए। जो ही हमारे पास आपका पैगाम पहुंचेगा और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम ऑन एयर तमाम लिसनर के सामने हम आपको पेश करें। और अगर जिनका पैगाम इस वक्त शामिल नहीं हो पाता उनके लिए

हज़रत, क्योंकि टाइम के भी हमने मैनेज करना होता है और इसके अलावा आपके मैसेजेस का सिलसिला बहुत जारी हो जाता है और अभी भी सिलसिला जारी हो चुका है। और देखिए कि अगर मैंने अभी तक मौजू जस्ट मौजू का नाम बताया और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक आरजे के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं कहता हूँ कि जहाँ से आपके चेहरे मुस्कुराहट आती है, वहाँ से ही हमारा सफ़र शुरू होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि रेडियो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है।

0: हमारे सामने एक चुनू सी मुनू सी एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, कमर्शियल ब्रेक, और हम कोशिश करेंगे कि उस कमर्शियल ब्रेक के बाद हमने जो मौजू है उसका आगाज़ बकायदा से आगाज़ करें, और आप तब तक ये सॉन्ग इन्जॉय करें, और आफ्टर कमर्शियल ब्रेक हम इस मौजू का आगाज़ करेंगे, और तमाम क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ड्राइव जोन है, और मैं आपको कहना चाहूँगा हैव अ सेफ ड्राइव, और हमारे साथ हमारी जो ड्राइव जोन की गाड़ी है उसके साथ
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 0757729926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

Once again, welcome back. और आप सुन रहे हैं 97.1 FM and also DAB and also DAB and program called Drive Zone. दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस त्यौहार की जो हम अपनी कंट्रीज़ में मनाते थे और आप यूके आके भी मनाते हैं, पर जो अपने मुल्क में त्यौहारों का मज़ा था वो अब वो मज़ा यूके में तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोस्त, वो गलियां, वो यादें, वो बातें, वो माहौल, वो चीज़ तो आम जाहिर सी बात परदेश में नहीं होती। कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जहाँ हम इस तरह मनाएं कि लगे कि हम अपने, पर अपना मुल्क अपना ही होता है, हर एक के त्यौहार भी अपने अपने हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम सब के त्यौहारों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, और आपको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने मुल्क में जो भी आप त्यौहार मनाते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह मनाते हैं, अपना दिन किस तरह गुजारते हैं, अपने एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अपने खाने क्या होते हैं, ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि हम अपने मुल्क में ये स्पेशली खानों का बहुत होता है कि फलां त्यौहार पे स्पेशल ये खाना पकेगा, फलां जगह जाएंगे, दोस्तों तो में ये होता है कि हम फलां के घर जाएंगे या फलां जगह घूमने जाएंगे, इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं ये जो हर एक इंसान के दिल में होती हैं कि फलां दिन आएगा तो मैं ये काम करूँगा। तो कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में इसी तरह की बातें चीज़ें हों और आपके भी राय शामिल की जाए, और साथ साथ आपके फरमाइशें भी पूरी की जाएँ, और आपकी जो भी फरमाइश हुई वो आप ज़रूर बताइएगा। बताने का तरीका वही पुराना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 01157100971 नंबर है, और इस पर जो भी आपका मैसेज हुआ, जो भी आप अपने मुल्क में त्यौहार मनाते हैं या ऐसी कोई खास चीज़ जो अपने त्यौहार के रिलेटेड हुई, आप ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात अपने काका कंप्यूटर पे जो ही आए हम आप तक शामिल करें।

ये बात तो बहुत हर एक जानता है कि इंसान अपना वतन तो छोड़ सकता है लेकिन अपने वतन की यादें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हर एक इंसान के लिए पीछे एक याद होती है और वो याद ही होती है जो इंसान जब भी किसी ऐसी चीज़ को देखता है तो वो याद जब आती है तो इंसान के दिल में ये पैदा होती है बात कि ये टाइम पे ये काम हुआ था और ये ज़िंदगी का एक अच्छा सफ़र था और एक अच्छा हसीन लम्हा था जिस वक्त ये काम हुआ था। जिस तरह के त्यौहार हैं, त्यौहार में इंसान को अब ऐसे भी कुछ बंदे होंगे जो इस त्यौहार आने वाले त्यौहारों पे आपके साथ नहीं होते तो कुछ लोगों के लिए उनकी याद होती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमने की होती हैं जैसा कि घूमने जाना, कहीं बाहर घूमने जाना या कोई ऐसा काम जो मिल बैठ के करना, जिस तरह के कुछ ऐसे गैदरिंग होती है जो सिर्फ इन त्यौहारों पर ही हम सब फ्री होते हैं और हम गैदरिंग करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वो आम हम कामकाज में इतना मसरूफ़ होते हैं जो जस्ट हम वॉइस पे ही या मैसेजेस पे ही हम बात करते हैं। तो इन त्यौहारों का ये भी एक ख़ास चीज़ है कि आप जब भी इस तरह के त्यौहार आते हैं हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और एक दिन अपना इंजॉयमेंट में गुजारते हैं।

पर जब हम यूके आते हैं तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि घर बदल जाता है, शहर बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, वो है त्यौहार और त्यौहारों से मोहब्बत। मुझे लगता है कि हर भी किसी भी आप कंट्री से हैं, आप भी ये मुझे बताएंगे कि इसी तरह की बात है, मैं बात सच कर रहा हूँ या ये बात जस्ट मेरे लिए है, मुझे लगता है कि ऐसी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि त्यौहार भी एक त्यौहारों से भी मोहब्बत करना एक अलग सी चीज़ है, और हर एक इंसान को अपने त्यौहारों से मोहब्बत होती है, और हर एक इंसान अपने त्यौहार एक खुशी हुजू से और एक सलूक से गुजारता है। अच्छा, हमारे मुल्कों में दिवाली, बैसाखी या ईद या कोई भी दूसरे त्यौहार होते हैं जो पूरे माहौल को बदल देते हैं, और प्रदेश में शायद ये वही गलियां, वो लोग, वो जो गैदरिंग है वो नहीं मिलती हमें, और मैं भी इस चीज़ को मिस करता हूँ, हर एक बंदा मिस, इवन कि हर एक बंदा मिस करता है, जिनकी फैमिलीज उधर मौजूद हैं वो भी कोशिश करते हैं, जो जिस तरह या जिन ऐसी फैमिली जिनके बच्चे उधर ही पैदा होते हैं यूके में, वो भी कोशिश करते हैं कि चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या अफगानिस्तान से या किसी भी मुल्क से जो हमारी ज़बान समझते हैं, उनको वो भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप ये चीज़ अपने बच्चों को भी तक डिलीवर करते हैं कि हम अपने मुल्क में ऐसे त्यौहार कैसे मनाते थे, और कोशिश करूँगा कि मैं भी आज अपनी राय शेयर करूँ और आप भी अपनी राय शेयर कीजिएगा।

और वैसे भी अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आपके मुल्क में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, तो एक अलग सी कहानी शुरू हो जाती है, और वो कहानी उन कहानियों से भी बेहतर होती है जो हम वैसे हम किसी को सुनाते हैं। और एक मैं कहता हूँ कि जिस तरह लाइक मैंने एक इवन कि ये जो चीवी चीज़ होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं इसको एक्सपीरियंस करूँ और बंदों की राय लूँ और फिर इस चीज़ को डिलीवर करूँ आप तक। और मैंने एक दोस्त हैं, रैंडम दोस्त थे उधर यूके में, उनकी उनसे पूछा था कि आपके बच्चों ने क्या है ये सवाल आपसे किया, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही यही है, जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है हम उनको स्पेशल वो बताते हैं और उनको गाइड करते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह त्यौहार मनाए जाते हैं और ये चीज़ें उधर खाने बनाए जाते हैं, ये हम एक्टिविटीज़ करते हैं, और ये चीज़ उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि वो उनको उधर का माहौल पसंद होता है, उधर का ही वो उठते बैठते देखते हैं कि ये माहौल है, उनको ये नहीं पता होता कि आपके मुल्क में कैसा माहौल है। जब आप उनको उनके मुल्क अपने मुल्क लेके जाते हैं तो उनको फिर वो चीज़ देखते हैं कि अच्छा इस तरह होता है, जिस तरह की शादियाँ देख लें इंडियाज़ में या पाकिस्तान में या हर एक मुल्क में शादियाँ किस तरह होती हैं या यूके में शादियाँ किस तरह होती हैं, इस तरह त्यौहार और भी त्यौहार हैं जिस तरह ईद है या दिवाली है बैसाखी है, ये हम कोशिश तो करते हैं हम यूके में भी इसी तरह मनाएं, पर मुझे लगता है कि अपने मुल्क की जो बात है वो अपनी ही है।

और मुझे लगता है कि यूके में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यूके में जो है वो आपको अपने त्यौहार मनाने की, हर एक कम्युनिटी को चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, वो अपने त्यौहार मनाने की एक फुल ऑन इजाज़त है और आप अपनी अपने त्यौहार अपनी मुल्क की तरह मना सकते हैं। और मुझे ये चीज़ यूके की आके बहुत अच्छी लगी। और आपने भी अपनी राय देनी है कि आपको कैसा लगता है कि आप एक मुल्क में रहकर अपनी आज़ादी अपने कल्चर के मुताबिक इंजॉय करें और अपने कल्चर के मुताबिक उसको परफॉर्म करें। और मैं कहता हूँ कि ये आपके खुशी का एक अलग सा ही समा होता है कि आपने अपनी खुशी अपने मुल्क के मुताबिक इंजॉय करें। ये अलग बात है कि आप अगर यूके में आए तो आपको जाहिर सी बात है आपके सारे वो फ्रेंड बचपन के जो उनके साथ मिल बैठ के गाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, वो तो नहीं साथ होते, पर हमारे ऐसे कुछ खास दोस्त बन जाते हैं जो आपको के साथ साथ होते हैं, या आपके मैं कहता हूँ कि फेलोज़ लाइक जो वर्क फेलोज़ होते हैं, रूम होते हैं, वो भी आपके साथ साथ ये त्यौहार मनाते हैं। इवन कि मुझे इधर ये भी चीज़ अच्छी लगी है कि क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर एक का अपना कल्चर, अपने रवायात हैं, अपने ही रस्मात हैं, तो जो भी लाइक एक ईद आती है ना, तो अगर इंडिया से कोई है ना तो इंडियंस हैं, वो आपको ईद मुबारक कहते हैं और आपके साथ वो खुशियों में शामिल होते हैं। इसी तरह हम लोग हैं, जब उनकी कोई त्यौहार आता है, चाहे इससे जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके साथ वो त्यौहार इंजॉय करें। और हम इवन के रोड्स पर जाते हैं बार देखने के लिए कि इनके त्यौहार कैसे होते हैं,

अच्छा सर, मैं ये बताता चलूँ कि सॉन्ग्स भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन आज का इस प्रोग्राम का पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन तो बहुत लेट हो गया है और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इस आप मुझे होने का एहसास दें और ये क्वेश्चन का भी जवाब दें। साथ साथ फिर कमर्शियल ब्रेक तकरीबन पास आने को है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक सॉन्ग्स भी इंजॉयबल सॉन्ग भी सुनाऊँ, और बल्कि सुनाओ नहीं लगाऊँ। सर ज़बान है ना कि ज़बान कभी भी किधर भी फिसल सकती है, और हर एक की ज़बान बंदे को कोशिश, मैं कहता हूँ कि वो बंदा ही बहुत अच्छा है जिसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल, और एक बेहतर और अच्छे इंसान की निशानियों में से एक है कि आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें और आप अपने अल्फाज पे कंट्रोल करें। और मुझे लगता है कि मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। सवाल आज का ये है कि अगर आप यूके में रहते हैं तो अपने वतन का कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा मोहब्बत से मनाते हैं, और क्यों? क्यों ये क्यों है ना, जो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको एक पुरानी यादों में ले जाएगा, और आपको ये लगेगा कि क्यों, वाई, कि ये ऐसा त्यौहार ऐसा खास क्यों है। और हर एक मुझे लगता है कि बेशक आप लाइक अगर आप पाकिस्तानी हैं ना, अगर मैं मैसेजेस देखूं कि दो तीन बंदों के मैसेजेस देखूंगा ना, तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि तीनों के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे। और अगर आप इंडिया से हैं, इसी तरह मैं ये कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, एक ही कंट्री में रहते हुए हर एक अलग त्यौहार मनाने का एक तरीका होता है, और उनको अपने त्यौहार से हर एक को अलग अलग त्यौहार से मोहब्बत होती है। कि मेरे लिए ये त्यौहार जो है वो मेरे लिए बहुत एक इंजॉयबल होता है, और मुझे ये त्यौहार अच्छा लगता है। इवन कि कुछ तो यूके में रहने वाले स्पेशली अपने कुछ त्यौहारों पे अपने मुल्क जाते हैं छुट्टियां लेके, और साथ अपने फैमिलीज जो रहती हैं वो अपने बच्चों को स्पेशली इन त्यौहार मनाने के लिए अपने मुल्क वापस लेके जाते हैं, और उनको दिखाते हैं कि हमारा कल्चर, हमारे जो रवायात हैं वो किस तरह की हैं। आपने अपना जवाब ज़रूर भेज हमें बताना है, और बताने का तरीका वही पुराना जो इस वक्त नए लिसनर मेरे साथ शामिल हुए हैं, उनको बताता चलूँ कि 01157109711 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आपने मैसेज करना है, और मैसेज पे आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना प्यारा सा पैगाम जो आपने अपने मुल्क में मनाया और या यूके में मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, आपने ज़रूर बताना है, और अपने होने का एहसास देना है। आपका एहसास ही हमारे एक जान है, और मैं कहता हूँ कि एक आरजे के लिए ये एक खुशी की बात है कि आप अपने अपना होने का एहसास हमें देते हैं। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि अगर याद फासले हजारों मील के हों तो अक्सर वायात मोहब्बतें अपने परदेश में भी आपको ये फील नहीं होने देती थी कि आप एक पराए मुल्क में हैं। और वैसे भी जो यूके की जो मैं बात अगर करूं तो मैंने देखा है कि इधर बंदे को वैसे भी नहीं महसूस होता, क्योंकि इधर हर एक कंट्री के मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जो मौजूद होते हैं अशास, और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको यादें तो आती होगी, पर मुझे लगता है कि यूके में ये चीज़ महसूस ही नहीं होती कि आप ये चीज़ हो रही है आपके साथ, कि आपको महसूस हो कि आप अपने पराए मुल्क में हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आप ये फील करते हैं कि ऐसे कि आप पुराने मुल्क में इन त्यौहार को मिस करते हैं या नहीं करते, आपने भी ये भी बताना है मुझे।

सॉन्ग को साथ साथ इंजॉय करते हैं। और साथ साथ आपको बताता हूँ चलूँ कि ईद की खुशियाँ प्रदेश में कैसे मनाई जाती हैं। और जब यूके में ईद आती है तो सुबह सवेरे हम घर से एक अलग सी रौनक लेकर उठते हैं। अच्छा, जो यूके की ईद है ना, वो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की ईद कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि यूके में हम जो तो हर फैमिलीज के साथ रहते हैं, उनको तो अपने नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि फैमिलीज़ के अपने एक गोल सेट किया होता है कि हमने इवेंट के दिन ज़्यादातर तो फैमिलीज़ अपने मुल्क वापस जाती हैं, और यही एक मौका होता है कि जब आप छुट्टियां मनाने अपने मुल्क में जाते हैं। और अगर जो यूके की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैं अपना बताऊं तो हम ये करते हैं कि हम उठते बैठते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और बाद में बाहर घूमने चले जाते हैं, फिल्म देखी, शॉपिंग की, या कहीं भी निकल के किसी दूर दराज इलाके में, लाइक अगर एक बंदा लंदन में रहता है या बर्मिंगम में चले गए किसी दोस्त को मिलने, क्योंकि वैसे तो यूके में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी दूसरे के पास जाएं, जस्ट फ़ोन पे भी वो भी हफ्ता मंथ बात ही नहीं होती। ऐसे दोस्त होते हैं जो सेम सिटीज़ के होते हैं और हम उनको मिलने चले जाते हैं, ये भी हमारी एक्टिविटी का एक हिस्सा है जो हमें मौका मिलता है। वीकेंड पे भी मैं सोचता हूँ कि ये मौका नहीं मिलता, वीकेंड पे भी हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम कहते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और मेरी तरह कुछ लोग होते हैं जो सो के वीकेंड गुजारते हैं।

जब मैं अपने मुल्क में था तो मैं आपको अपने बताता चलूँ, साथ साथ आपका भी सुनूंगा। और मैं जब बताता चलूँ कि जब मैं अपने मुल्क में था तो हमारे एक्टिविटी ये होती थी कि मैं सुबह सुबह उठता था, तैयार हो नए कपड़े पहने और बच्चों के साथ मिला और इंजॉयमेंट की, कुछ खुशियाँ बांटी, खुशबू वगैरह लाई और मस्जिद की तरफ रवाना हुए, नमाज की अदा की और लोगों को दूसरे गले मिले। अच्छा, हमारे दरमियान ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा मौका जो है ना, वो एक हमारी एक रूटीन होती है कि हम वैसे उन बंदों को नहीं मिलते, इतना टाइम नहीं होता या जॉब डिफरेंस होता है, शिफ्ट का डिफरेंस होता है, तो हम कोई सुबह जा रहा है कोई शाम को आ रहा है, इस तरह का डिफरेंस होता है। तो इसी त्यौहार में भी हम मिलते हैं और इसके अलावा हम उन सबको ईद मुबारक कहते हैं और फिर घर वापस आते हैं। घर आके हम जो खाने बने होते हैं, खासकर मीठा मीठा हमारे उधर मुल्क में होता है और मैं कहता हूँ कि मैं उस मीठे को आज भी इंजॉय करता हूँ, जो उस मीठे की वाइब है वो इधर आके हमें नहीं मिलती। चाहे हम जितने मर्जी शेफ बन जाए, हम करें बड़े, हम बड़े मास्टर हैं कि हम ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, जो उस दिन का मीठा होता है ना, वो उसकी एक अलग ही टेस्ट होता है। और नॉर्मली इस तरह होता है कि जब एक ही खानदान के हम मुख्तलिफ लाइक जो फैमिलीज, एक तो जॉइंट फैमिली होती है, एक होती है कि जो फैमिलीज सेपरेट रहती हैं, अगर दो भाई हैं तो दोनों के अलग अलग घर होंगे। और इस तरह के इवेंट्स पे इस तरह होता है कि हम सब अमूमन, ये होता है कि हम एक ही घर अमूमन इस तरह होता है कि बड़े भाई के घर हम खाना खाते हैं। तो पाकिस्तानी फैमिलीज इसी तरह करती हैं कि हम एक के घर वो इवेंट, एक मैं कहता हूँ कि एक महफल सा समा होता है और एक मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बने होते हैं, एक ही दस्तरखान होता है और मुख्तलिफ़ हम जैसे कि खासकर हमारे पाकिस्तान में बिरयानी बहुत पसंद की जाती है और इसके अलावा हम और भी खाने बनाते हैं इस तरह के इवेंट्स पर, साथ साथ मीठा भी बनाते हैं और हम फिर उस चीज़ को हम गपशप लगाते हैं दस्तरखान पे, साथ साथ खाना खाते हैं और उस चीज़ माहौल को एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि आप अपने अपनों के साथ कुछ वक्त देर गुजारते हैं और अपने बातें शेयर करते हैं और कुछ वो यादें ताज़ा करते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए।

अच्छा मुझे एक बात याद आई, मैंने यही सोच रहा था कि मुझे एक दोस्त की बात याद आ गई कि उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि मैं अपने त्यौहार इधर यूके में इस तरह होता है कि जब भी ईद आती है तो मैं अमूमन हम जब भी ईद के बाद हम घर को नमाज़ पढ़ के ईद की वापस आते हैं तो इस तरह होता है कि मैं अपनी अम्मी को वीडियो कॉल करता हूँ। तो वीडियो कॉल में इस तरह होता है कि मैं अपनी अम्मी को बातें चीतें होती हैं वो बार बार कहता हूँ और अम्मी हमेशा मुझसे ये बात पूछती हैं कि बेटा शीर खोरमा बनाया है कि नहीं, और मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी रेसिपी पे के ये रेसिपी के बगैर मेरी ईद नामुकम्मल है और मैंने बनाया है और मैं उनको दिखाता हूँ कि मैंने ये चीज़ बनाई है और इसके अलावा जो भी चीज़ें बनाई होती हैं मैं ज़रूर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक ये मैं कहता हूँ कि एक मोहब्बत है अपने त्यौहार से आप लोगों की, जो आप लोग इस चीज़ को मनाते हैं और इतने खुशहलूस से मनाते हैं कि वो लगता है कि आप इस चीज़ को अभी भी संभालें, वरना कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता, डेट्स नहीं याद होती। मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं वो लोग। इवन कि मैं लिसनर्स ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको अपने त्यौहारों को ज़िंदा रखना चाहिए। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको याद ही नहीं होता कि इस मंथ क्या होना है और इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको अपने पुराने बातें नहीं याद होती। आपको चाहिए कि आप अपने पुरखों की ऐसे चीज़ें जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं उनको याद रखा जाए, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप ऐसे त्यौहार जो अपने पुरखों में बनाए हों या ऐसी चीज़ें जो आपके पुरखों ने की हों और आप ना करें कि हम मॉडर्न ज़माने के हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है स्पेशली एशियन कंट्रीज़ की, और मैंने ये चीज़ पूछी भी है कि इस तरह होता है कि नहीं। वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, कमर्शियल का भी टाइम नज़दीक आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि बातें तो बहुत सी हो गई, आप लोगों को थोड़ा सा सॉन्ग्स भी इंजॉय कराया जाए, तो करते हैं सॉन्ग इंजॉय और आफ्टर कमर्शियल ब्रेक हम आपके मैसेजेस शामिल करेंगे और हम आप कोशिश कीजिए कि हमारे साथ वो मैसेजेस शामिल करें और आप बताएँ कि आप यूके में या अपने मुल्क में अपना त्यौहार कैसे मनाते थे।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

Once again, welcome back, or option FM 97.1 FM and also DAB, and program called Drive Zone or with RJ Mosum. हम तमाम आने वाले न्यू लिसनर्स को अपने 97.1 FM की तरफ से वेलकम कहता हूँ और आपको दिल की अथक राही से वेलकम कहता हूँ. और इस वक्त उम्मीद है कि प्रोग्राम ड्राइव जोन है और मैं ये टाइम भी पीक ड्राइविंग का है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वक्त घर पहुँच गए होंगे और हैरियत से पहुँच गए होंगे. और जो इस वक्त अभी भी ड्राइव कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा हैव अ सेफ ड्राइव. ससरत एक प्यारा सा बॉलीवुड मेशअप सॉन्ग्स हम इंजॉय कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि आपके टेस्ट को हर कमर्शियल ब्रेक के साथ हम चेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये महसूस ना हो कि आरजे तो अपनी प्लेलिस्ट ही लेकर बैठा हुआ है. हम आपकी डिमांडें पूरी कर रहे हैं जनाब.

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: अच्छा पार्टी तो बाद में शुरू करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके अभी मैसेजेस शामिल करें, और मुझे लगता है कि पार्टी की थोड़ी सी अभी टाइम है, और साथ साथ पार्टी इसलिए शुरू की है क्योंकि हमारी क्योंकि प्रोग्राम का आज का टॉपिक ही इस तरह का है कि हमारा ये इंजॉयमेंट का टाइम है, और आज हम अपने आप को वो सैडनेस नहीं देंगे कि बेशक हमारे मुल्क की पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, पर हम अपने माइंड को इस तरह सैडनेस नहीं करेंगे कि आपको लगे कि आपका मूड ख़राब हो गया, क्योंकि उम्मीद है कि वैसे तो आपका उम्मीद है कि आपका पूरा दिन आज का अच्छा गुजरा होगा, पर मेरी कोशिश ये है कि आपका मूड भी साथ साथ बेहतर किया जाए।

0: दम में है दम, मस्ती है माहौल
1: में। सोशल मैसेजेस का सिलसिला जारी है और मैं अब टाइम आ गया है कि मैं पहला मैसेज शामिल करूं। और पहला मैसेज ही पाकिस्तान से, माशाल्लाह, अहमद फ्रॉम बर्मिंगम एंड पाकिस्तान में ये रहने वाले हैं और इनकी होम कंट्री पाकिस्तान है। और कहते हैं कि मुझे अपने गांव की ईद बहुत याद आती है। जी बिल्कुल, हम वैसे भी हम ये कह रहे हैं अहमद के आपको अपने मुल्क की, हर इंसान को अपने मुल्क की याद होती है, मुझे अपने मुल्क की याद आती है। और अपने मुल्क के त्यौहार ही वो चीज़ होती हैं कि अपने मुल्क की वो याद दिलाते हैं। और आप कहते हैं कि नमाज के बाद पूरा गांव एक दूसरे के घर जाता है और हर दरवाज़ा मेहमानों के लिए खुला होता है। जी बिल्कुल, इस तरह होता है। मैं भी क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने अपने लिसनर को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अदर कंट्री के उनको बताता चलूँ कि हमारे साथ वहाँ यही होता है कि हम अक्सर मुख्तलिफ ख़ानदान के जो होते हैं वो इतने मसरूफियात की वजह से हम मिल बैठ के नहीं एक जगह बैठ पाते। तो इस तरह के त्यौहारों में होता इस तरह है कि हम मुख्तलिफ हर एक के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, कुछ ऐसी गप्पे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ हाल वाल पूछते हैं उनका और वो हमारा पूछते हैं। इसी तरह थैंक यू अहमद आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए और अपने होने का एहसास देने के लिए।

सबसे मैसेज शामिल करेंगे इंडिया से, और इंडिया से मैसेज आया है प्रिया का, और आप कहती हैं कि मुझे दिवाली की रात अपने घर की रंगोली और दीवे की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है और पूरे मोहल्ला जगमगा उठता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे पता है कि जो मैंने अपने जो भारतीय दोस्त हैं उनसे सुना है कि वो अपनी दिवाली इस तरह मनाते हैं कि अपने तमाम पूरा अपना मोहल्ला जगमगा उठता है, उनका रोशनियों से शाम होते ही जगमगा उठता है रोशनियों से, और हर जगह रंगोलियाँ फैलती हैं, और इवन के इवेंट से पहले ही अपने मुख्तलिफ घर एक घर के अपने पड़ोसियों के घर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गुलाब जामुन मिठाइयाँ और मुख्तलिफ में इस तरह के मिठाइयों की जो भी अकसाम हैं वो बांटी जाती हैं, और ये एक उनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है। और आपको मैं थैंक यू कहता हूँ प्रिया, आपने हमें अपना होने का एहसास दिया और हमारे शो की जीनत बनी। अच्छा, मैंने जो कमर्शियल ब्रेक के दौरान स्पेशली सारे मुल्कों से ये मैसेज शामिल किए हैं और चुने हैं मैसेज, और जिनके मैसेज शामिल नहीं कर पा रहा आपको बताता चलूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम एशियन कंट्रीज़ के जितने भी मुल्क हैं हम उनको साथ लेके चलें। अगर मैं एक ही मैसेज, टाइम की वजह से हम लिमिटेड टाइम्स होता है और मैसेज ज़्यादा होते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब लाइक अगर पाकिस्तान से मैसेज 10 आए हैं तो उनमें से 2 को शामिल करूँ ताकि बाकी मुल्कों के कंट्रीज़ के भी लोगों ये महसूस ना हो कि आप हमारे मुल्क का नाम नहीं ले रहे या हमें नहीं शामिल कर रहे, ये क्या वजह है। जनाब, आपको भी शामिल करेंगे और आपका भी पैगाम हमारे तक पहुंचेगा। यूके पार्टी अभी तो शुरू हुई है, आपने सुना नहीं? अच्छा, रहीम फ्रॉम मैनचेस्टर, और ये बांग्लादेश से हैं, इनका होम कंट्री बांग्लादेश। आप कहते हैं कि मेरे लिए भी ईद का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है। जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा कि हमारा ये तकरीबन ट्रेडिशन है कि हम मिल बैठ के सारा खानदान एक जगह बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं और बातें चीतें करते हैं, और इस खानदान के साथ बैठना एक बहुत शर्फ की बात होती है। मैं कहता हूँ कि आपको अपने बड़ों के साथ बैठना चाहिए, और हम को इस तरह नहीं करना चाहिए कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप कि अपने बड़ों को इस तरह रख दें कि जैसे कोई कीमती चीज़ एक कोने में पड़ी होती है। आपको चाहिए कि आप अगर आपके बड़े आपके साथ हैं तो उनको कुछ टाइम दिया जाए, ना कि सोशल मीडिया को या अपने कामकाज में इतना मसरूफ़ हुआ जाए कि आप उनको टाइम ही ना दे पाएँ। आप ज़रा सोचिए कि आप अगर बचपन में थे तो वो उन्होंने आपका किस तरह ख्याल रखा है। एक अगर माँ की बात की जाए तो उसकी एक नज़र अपने काम पर होती है और दूसरे नज़र आप पे होती है कि आप ना गिर जाएं या आपको कुछ ना हो जाए। और अब आपने क्या किया हुआ कि माँ को जो है एक कोने पे एक बिस्तर पे बस लटाया हुआ, और बस सुबह जाते हैं देख जाते हैं जी, अच्छा जी माँ लेटी है, बस ठीक है जी, दवाई ख़त्म है, दवाई ले आएंगे जी, बस ये इधर तक नहीं होना चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। वैसे यूके में तो इस तरह नहीं है, यूके में थोड़ी सी फास्ट लाइफ है, तो अमूमन इस तरह के हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना ही हमने इस तरह की कोई बात मैंने सुनी है। और मुझे लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखा जाए और जिस तरह उन्होंने आपका बचपन रखा है। ये नहीं है कि आपने चमक छल्लो का ही सिर्फ ख्याल रखा जाए, और साथ साथ मैं आपको मूड चेंज करने के लिए चमक छल्लो भी ला रहा हूँ कि आपको ये ना हो कि आपको सिर्फ अपने ऐसे भाषण दिए जाएं कि आपका बोरियत महसूस हो, आप इंजॉय भी साथ साथ इंजॉयमेंट भी आप करें।

अच्छा बातें तो बहुत सी होगी, मैं चाहूँगा कि अब इन एक सॉन्ग्स अच्छा सा सॉन्ग इंजॉय किया जाए, और सॉन्ग्स ऑलरेडी चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी सॉन्ग को कंटिन्यू किया जाए। और अगर आपके भी कोई सॉन्ग की डेडिकेशन है या आपकी अपने लिए कोई सॉन्ग सुनना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका वही पुराना है, और आप हमें मैसेज कर व्हाट्सएप पर अपने कोई भी सॉन्ग्स, किस सिंगर का सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं हमें आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वो सॉन्ग लगाएं।

तब तक ये सॉन्ग सुने और कुछ देर के बाद हम फिर शामिल हो करेंगे मज़ीद मैसेजेस और मज़ीद करेंगे बातें। और मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की बात तो होगी, आप बाकी मुल्कों की भी थोड़ी थोड़ी बात की जाए और आपको अपनी यादें ताज़ा की जाएँ और आपने भी बताना कि आप अपने मुल्क में किस तरह अपने त्यौहार मनाते हैं और अब क्या यूके में आके किस तरह मना रहे हैं आपने।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब एंड प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन। और हम इस ड्राइव जोन गाड़ी के एक वो पैसेंजर हैं जो हर रोज इस सफर के लिए निकलते हैं। बातचीत हो रही थी वो यादों की, उन यादों की जो हम अपने प्रदेश में रहते हुए अपने घर की यादों को ताज़ा करते हैं या अपने त्यौहारों को जो शामिल करते हैं। और मैंने अब अपना म्यूज़िक भी चेंज किया है कि ताकि आपको आपकी डिमांड के मुताबिक सॉन्ग्स लगाए जाएं और आपके ख्वाहिशात पूरी की जाएं। और हम बात कर रहे थे उन मुल्कों की जो जिन मुल्कों में हम रहते हैं और उनकी उन त्यौहारों की, उन मेल मिलाप की, उन इवेंट्स की, उन खानों की। और साथ साथ हम मैं बताता चलूँ कि अब हम बातें वो तो होती रहेंगी, साथ साथ हम इंजॉयमेंट भी लाजमी है। और इंजॉयमेंट के लिए इंजॉयमेंट का तरीका वही है कि आपको एक प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाए जाएं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए प्यारे प्यारे सॉन्ग शामिल करूँ और हर एक की डिमांड को पूरा करूँ।

और मैं मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त फैमिली के बगैर अकेले यूके में काम के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में रहते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि मेरे नज़र में ये लगता है कि ईद जो है वो घर की ही है, और ईद या चाहे वो ईद है या दिवाली है या

0: बैसाखी है या और भी जो भी त्यौहार जिस चीज का भी है, असल खुशी वो है जो अपने मुल्क में हो। और इसके अलावा अगर खानदान में बैठ के जो वो इंजॉयमेंट या वो बातें होती हैं, वो बंदा यूके में नहीं कर सकता, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रूममेट्स हैं या आपके पड़ोसी हैं और या आपके कोई ऐसे फ्रेंड न्यू बने हैं इधर आके, पर वो बातें जो वो यादें वो नहीं होती जो आपके मुल्क में होती हैं।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया।
4: ओ मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0671 3677.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं 97.1 FM मेंडाल सो डैब एंड प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन। और पीछे नहीं चलना, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को, और मैं इसलिए ज़रा सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा था और साथ साथ आपके लिए कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ देर बाद मैसेजेस शामिल करूँ, पर प्रोग्राम आखिर अब अपने मंजिल को पहुँचने के करीब है। हमारी गाड़ी जो शुरू हुई थी 5 बजे, और हम बात कर रहे थे अपने होम टाउन की, अपने घर की, और वो घर जहाँ हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं लाइक अम्मी की आवाज़, अब्बू की आवाज़, अपने बहन भाइयों की आवाज़ें, और उनकी वो शरारतें हैं जो वो हमारे साथ करते हैं, या हम उनके साथ जो करते हैं, या उनकी वो डांट, माँ बाप की वो डांट जो वो हमें कहते हैं, या हम उनको कोई शरारतन कोई, या हमको काम कर लें, या हमें कोई डांट पड़ती है, वो बातों की बात हो रही थी कि ऐसी यादें भी ताज़ा की जाएं प्रोग्राम के अख्ताम पर, जो आपको मज़ीद इस चीज़ पे सोचने में मजबूर करें कि यार आज तय ने याद करा ही दिता। साथ साथ हम इंजॉय करेंगे अरिजीत सिंह को, और वन ऑफ फेवरेट सिंगर ऑफ

अच्छा, अम्मी के हाथ के खाने की बात की जाए तो अगर आप खुद भी खाना बनाएं या आपके कोई सिस्टर या आपके इवन के वाइफ भी जो भी खाना बनाएं, जो अम्मी के खाने की बात होती है वो मैं कहता हूँ कि उसकी एक अलग ही वाइब होती है और वो खाने का टेस्ट ही एक अलग होता है। चाहे आप बड़े हो जाएं या छोटे हो जाएं, अक्सर मैं छोटे होते हुए इसी तरह ज़िद किया करता था कि मैंने अम्मी के हाथ के ही खाना खाना है। तो इस तरह क्या आपके साथ भी होता है कि आपको भी अम्मी का खाना पसंद है या अपना बनाया हुआ खाना? वैसे तो मैं भी इस तरह करता हूँ कि लाइक मुझे क्या बनाना आता है, मैं बस अच्छे चिप्स बना लेता हूँ और इधर आके ही ये चीज़ें अब बाकी चीज़ें सीखना शुरू की हैं और सीख चुका हूँ तकरीबन। पर मुझे लगता है कि मैं जब भी कोई रेसिपी बनाता हूँ वो अच्छी नहीं बनती और रिव्यू भी लेता हूँ, क्या करें, बस दोस्त हैं हम। जिस तरह दूसरों को मुझे पता होता है कि अगर आज मैंने खाना बनाया है तो कल को उसने भी बनाना है, तो अगर मैंने रिव्यू उसका अच्छा दिया तो उसने भी मेरा रिव्यू अच्छा देना है, चाहे खाने में जो कुछ भी हो।

और मुझे लगता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जब मैं इधर प्रदेश में आऊँगा तो मुझे वो याद आएगी, वो खाना याद आएगा, और वो दाल याद आएगी, वो रोटी याद आएगी, वो जुमले याद आएंगे, और वो चीज़ याद आएगी जो अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। इंजॉय तो नहीं कर रहा है, ये सोच के इंजॉय कर रहा हूँ कि यार ये क्या ही दिन थे वो। सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ कि जब अम्मी कहती थी कि और खा लो रोटी, अभी खाई ही कितनी है, अभी एक ही तो खाई है। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको भी कभी आपकी अम्मी ने ये बात कही कि बेटा खा लो रोटी और खाओ, अभी तो थोड़ी सी खाई है। साथ साथ मैं अपने तमाम न्यू आने वाले लिसनर्स को भी वेलकम करना चाहूँगा और आपको 107.1 FM की तरफ से वेलकम कहता हूँ, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।

0: और साथ साथ मुझे ये भी चीज़ भी याद आती है कि जब मैं शाम को स्टडी करके और फिर ट्यूशन लेते थे हम और उसके बाद घर जाते थे तो एक ही आवाज़ आती थी, जो ही दरवाज़ा खोलता था तो एक ही आवाज़ आती थी कि आ गए दिन कैसा गुजरा। और ये चीज़ मैं कहता हूँ कि बंदे की सारी थकन या कोई भी बंदा डांट सुन के आया हो खास टीचर की, या अगर मैं जो बंदे अपने मुल्क में भी काम करते रहे हैं उनके लिए भी यही था कि उनके लिए भी मेरे मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये आवाज़ होगी, क्योंकि ये बात मैंने अपने दोस्तों से भी सुनी है कि उनको भी ये कहा जाता है कुछ के लिए वो इंजॉय। एक फिक्रा था कि क्या फिक्रा था, एक दोस्त ने कहा था कि मुझे अक्सर मैं जब भी घर जाता हूँ मैं सलाम करता हूँ तो उसके बाद मुझे यही फिक्रा मिलने को सुनने को मिलता था कि खाना लगा दूं आपके लिए या आप आज आपने खाना खाना है या नहीं। और हर घर की अपनी रवायत होती है, शाम को कुछ घरों में इस तरह होता है कि सब बहन भाई माँ बाप मिल बैठ के एक जगह बैठ के टीवी देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इवन कि हमने अपने माँ बाप को भी मोबाइल ले दिया और वो भी मुझे लगता है अब इस तरह गैदरिंग कम ही हो गई है, पर पहले पहले इस तरह होता था जब हम अपने मुल्क में थे और इस तरह होता था कि हम शाम को बैठते थे चाय पीते थे साथ टीवी इंजॉय करते थे और फेवरेट हर एक का फेवरेट एक ड्रामा होता था और हमारे बहन भाई में ये लड़ाई होती है कि मैंने ये सुनना है और दूसरा कहता था नहीं मैंने ये वाला चैनल लगाना है और यही एक उस वक्त की तो ये लड़ाई थी और आज हमें वो बात याद करके एक वो प्लेयरफुल मूवमेंट वो महसूस होता है और वो एक मुझे लगता है कि आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर वक्त आया होगा जिसमें आप ये चीज़ एक इंजॉयबल मूवमेंट में तब्दील की होगी। और आज वो दिन नहीं रहे, वो बातें नहीं रहीं, वो यादें नहीं रहीं, वो मुल्क नहीं रहा, हम हज़ारों मील दूर हैं और हमें वो याद ही और बातें वो याद ही रह गई और वो मुस्कराहटें वो लड़ना झगड़ना वो उठना बैठना अब वो यादों में रह गया और हम चाहे हम कितने ही करीब हों लाइक अगर हम डेली अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर भी बात कर लें पर वो जो लम्हात हैं वो हम शामिल नहीं कर सकते और यही वो लम्हात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और इंसान इन चीज़ों को किस तरह लेके चलता है ये इंसान के ऊपर ही मबनी है।
1: जब बाकी दुनिया धुंधली लगे, जब रात भी उजली उजली।
0: और साथ साथ ये बताता चलूँ कि हमारी जो प्रोग्राम की गाड़ी है वो तकरीबन अपने अहतमाम के करीब तरीन है और हमारी गाड़ी का स्टॉप आने वाला है और आपसे फिर मुलाकात होगी कल और सुन आपने हमें दो घंटे हमें अपने होने का एहसास दिया, हमें सुना, वो तमाम लिसनर जो हमें सुन रहे हैं अभी भी उनको मैं अपने दिल की अथक गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम और वेलकम कहता हूँ अपने फजल 97.1 एफएम की तरफ से। और साथ साथ आपने ये अपने होने का एहसास दिया, आपने मैसेजेस किए और ये मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप हमें अपने इस काबिल समझते हैं कि अपनी बातें शेयर करें हमें। अच्छा, मुझे लगता है कि जब हम घर वालों से दूर होते हैं तो रिश्तों की कीमत हमें तब ही पता लगती है, ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं आज तक समझ आई कि जब हमारे पास एक इंसान मौजूद होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते और हम कहते हैं उन बातों को बातों में टाल देते हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको हर मोमेंट इस तरह गुजारना चाहिए कि जिस तरह वो इंडिया में मैंने इंडियंस रील्स में ये देखा था कि इंडियंस जो लिसनर है वो मुझे बताइएगा कि वाकई ये बात है कि हर पल ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो, तो मुझे लगता है कि हमें भी हर पल ऐसे जीना चाहिए कि जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि कोई आपके ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि कब आपकी भी गाड़ी ज़िंदगी की अहतमाम को पहुंच जाए। तो कोशिश किया करें कि खुश रहा करें, मूड अच्छा रखा करें, अपने माइंड को फ्रेश रखा करें, जिस तरह का भी हो मूड कोशिश किया करें कि अपना मूड फ्रेश रखा जाए, अच्छा रखा जाए और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो ये कह के टाल ڈال دیا کرو کہ کل کا دن اچھا ہوگا, امید رکھا کرو اس چیز پہ کہ کل کا دن اچھا آپ کے لیے ہوگا. اور اب آگے کہ میرا فیوریٹ سانگ, اور آپ کا بھی امید کرتا ہوں یہ فیوریٹ سانگ ہوگا, اور سنتے ہیں یہ سانگ, اور آفٹر دیٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور تھوڑی سی ایک آدھ میسج شامل کروں گا. سنتے ہیں یہ سانگ اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے, کیونکہ ہماری گاڑی اسٹاپ کو پہنچنے والی ہے.

जी बिल्कुल, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा और आप भी चाहिए अपने चाहने वालों को, और मैं अपने चाहने वालों को चाहूँगा। बस वक्त की घड़ियाँ इतनी करीब पहुँच गई कि पता ही नहीं चला कि किस तरह 2 घंटे गुजरे और आपसे गपशप हुई। कुछ यादें ताज़ा हुई, कुछ मैंने अपनी यादें ताज़ा की, कुछ आपकी यादें ताज़ा हुई, और मुझे लगता है कि ये एक मुझे बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये शो था, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत बेहतरीन किस्म का शो लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने ऐसी यादें ताज़ा की जो हम अपनी नॉर्मल रूटीन में भी याद रखते हैं। क्योंकि जब भी हमारे मुल्क का नाम आता है तो हमें ये लगता है कि यार ये क्या बात हो गई है, यार ये चीज़ मुझे अपने मुल्क की याद है। जिस तरह के घर की बात मैं कह रहा था कि आपको अपने मुल्क का घर बहुत याद आता है, और इसी तरह जिस तरह ये मुझे मैसेजेस भी आए हैं। लास्ट सेगमेंट है और कुछ देर रह गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेजेस शामिल करूँ।

और ये हमारी गाड़ी की घड़ियाँ बिल्कुल करीब पहुँच गई हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने मैसेजेस शामिल हो सकें करूँ, और आपको शुक्रिया अदा करूँ, और आपको अल्लाह हाफिज़ करूँ, और आपको ये बताता चलूँ कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बने, और आपने हमें 2 घंटे सुना, और जो अभी अभी शामिल हुए हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप हमें कल भी सुनिएगा। हमारे प्रोग्राम का नाम ही ड्राइव जोन, और स्पेशली हमने ये प्रोग्राम डेडिकेट किया है उन तमाम ड्राइवर हजरात के लिए जो इस वक्त मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं और सुनते हैं, और मुझे लगता है कि ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है। और मैं आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में हमने ये एक लाइन ऐड करूँगा, जिसमें लाइन में कहा करूँगा कि सिर्फ आपके लिए, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ आपके लिए। अच्छा जी, मैसेज आया है अंजलि फ्रॉम यूके, और इनका होम टाउन है इंडिया। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, जैसे वो मिल बैठ के बैठकर चाय पीना और घंटों बातें करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम फ्री होते हैं और हम अपने से बातें करने बैठते हैं तो बातों से बातें निकलती हैं। एक बंदा अपनी कोई स्टोरी सुनाता है, दिन कैसा गुजरा, इस तरह गुजरा, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, और दूसरा बंदा इसी तरह ये सुनाता है, और इसी तरह हम बहन भाइयों में आपस में बातें होती हैं, घर वालों से बातें होती हैं। घर वाले कुछ हमें नसीहतें करते हैं और कुछ हम उनको अपनी शरारतें बताते हैं, या कुछ हम ऐसे वाक़यात बताते हैं जो हमने आते हुए ऑब्ज़र्व किए। लाइक कोई भी चीज़ जो हम आते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं, घर आके बताते हैं ये चीज़ हमने देखी है, और ये इस तरह हुआ, फलां फलां फलां। अच्छा, ये अभी जो मैसेज शामिल करने जा रहा हूँ वो इवन के मेरी भी ये इसी तरह सेम टू सेम यही कहानी थी, और मैं मैसेज पढ़ते हुए मुझे एकदम से याद आ गया। वो बात है ना, मैं कहता हूँ कि हमारी उम्मीद होती है कि आपको भी ये एहसास दिलाया जाए कि, और आपको भी अपनी आपकी यादें ताज़ा करवाई जाएँ। और देखिए आज मुझे भी ये एक पुरानी याद ताज़ा हुई जो मेरे जहन में नहीं थी पहले। इसी तरह होता है कि हम अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें ये जहन में नहीं होता कि ये याद भी हमारी, जब हमारी नज़र से गुजरती है या हमारी समातों से गुजरती है तो हम कहते हैं कि यार मेरे साथ भी ये काम हुआ था। अच्छा जी, सुमन फ्रॉम लंदन, और आप कहती हैं कि मुझे अपने दादा जान की कहानी बहुत याद आती है, हर रात सोने से पहले मैं हमें एक नई कहानी सुनाते थे। जी बिल्कुल इसी तरह है, और हम भी अपने दादा जान और इवन के नाना जान से भी इसी तरह कहानियां सुना करते थे, और वक्त को एंजॉय करते थे, और वो वक्त इतना कीमती वक्त था कि मैं कहता हूँ कि कभी वो वक्त वापस आ जाए और हम फिर वही कहानियाँ उनके साथ लेट के सुने और इंजॉय करें उस। हालाँकि वो कहानी वो हैं जो आजकल हम अपने बच्चों को YouTube पे लगा के देते हैं, वीडियो लगा के देते हैं कि एक मोटा हाथी घूमने चला, वो वाली कहानियाँ नहीं थी। ये वो कहानियाँ थी जो हम एक हकीकत पे मबनी कुछ कहानियाँ थी, कुछ मनगढ़ंत भी होती थी, पर हमें लगता है कि ये मोबाइल से ज़्यादा वो इन्जॉयमेंट और इन्जॉयफुल वो होती थी कि जब हम सारे इकट्ठे बैठे होते बहन भाई, या हमारे इस तरह होता था कि हमें अपने दोस्त के घर चला जाता था शाम को, और साथ उधर ही मेरे नाना अबू भी बैठे होते थे, हम उधर बैठ के हम अपने दोस्तों के साथ, हम बहन भाई भी जाते थे, वो भी होते थे, हम सारे उनको स्पेशली ये कहते थे कि आज हमें कोई नई कहानी सुनाए, और वो सुनाते थे। अच्छा जी, वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का, और हमारी गाड़ी उस स्टॉप पे पहुंच चुकी है जो आप को पता है कि वक्त इस तरह गुजरता है कि बंदा उस वक्त की कदर कर ले तो वो ही अच्छा है। और मैं आपको, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो या ऐसी बात जो मैंने कही हो जो आपके दिल को लगी हो, तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और फजा 97.1 FM का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मौका दिया कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ और अपनी बात कह सकूँ। और मैं आपको कहूँगा कि आपसे दिल से वेलकम और अल्लाह हाफिज़। और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इंजॉय कीजिए प्यारे प्यारे सॉन्ग को, और आफ्टर दैट मुलाकात होगी आपसे कल।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
7: रेडियो बजार 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: जी तुसा सुनी रेडियो फजा 97.1 FM, तुसा दा अपना भरा अपना दोस्त अपना वीर अपना कॉलीग उमर नए प्रोग्राम नाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है।
1: वसे कश्मीर सोना, वसे कश्मीर सोना, ओ खुले बटे कमीजां दे।
0: तुसा के अंदाजा होई गया सी के गाना जे लगे है जनाब ये गाना कश्मीर ने वाले ने प्रोग्राम है रंगे कश्मीर। Welcome to a new program of mine. Welcome to all the listenership of Radio Fizaa 97.1 FM. And you meet karna tusa sare theek thaak ho, so tamam mariya pehna pra saryan ki mare doston ki all my colleagues everybody saryan ki welcome hai ji. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and very good evening to everybody.

जी काफ़ी सारे साढ़े दोस्त बाप दोस्तों भ्रावान भैन ना सारे ना बहुत सारे लोगों ने आखना सी जी तुसा कोई इहो जिहा प्रोग्राम आणो जिहड़ी साढ़ी कश्मीरी कम्यूनिटी वास्ते आवे सारे वास्ते आवे जी बिल्कुल असां इस हवाले नाल सोचिया और असां ये चीज़ महसूस की है कि इस प्रोग्राम की बड़ी जरूरत सी साढ़े इस रेडियो स्टेशन तो 97.1 FM रेडियो फिजाज तुसा अपना रेडियो स्टेशन है लोकल रेडियो स्टेशन है तुसा अपना है तुसा ने हार्ट ऑफ नॉटिंघम विद इन हार्ट ऑफ कम्यूनिटीज राइट देयर जब तक तुसा असा की सपोर्ट करने सो वी विल ऑलवेज डू थिंग्स फॉर द कम्यूनिटी विच इज अभी असानी कोशिश रहनी हमेशा अपनी कम्यूनिटी वास्ते सब कुछ करिए जो भी असा फैसिलिटी प्रोवाइड करी सकने व्हाटएवर इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्यूनिटी वी मेक श्योर वी डिलीवर अपॉन दैट।

9 past 7 5 मिनट रहने साल को कमर्शियल ब्रेक ने टाइम होइए सी साला ते उम्मीद करने तो साडे सारे साथ देने दसो जिथे भी तुसा संग सुनी रहो जिथे जिथे तक साडी आवाज पहुंची रही है अगर कोई मसला है आवाज इज मसला होना है कोई भी किसी चीज ना अगर तुसा रेडियो ने आवाज नहीं सही नहीं यू कैन ऑलवेज कॉल मी व्हाट्सएप मी व्हाट्सएप करी के भाई सकने तुसा जी आवाज सही नहीं आ रही या कोई भी चक्कर होना है

0: असली रहंदा।
1: असली रहंदा जी, मीरपुरी खून, क्या बात है जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड ये साढ़े एक भाई बहुत ही अच्छे जे उन्होंने उसे पेश किया जा रहा है। साढ़े भाई साहब, उम्मीद करना तुसा इसकी खूब इंजॉय किया उसी। और आई ट्राई माई बेस्ट टू प्ले एज मैनी डेडिकेशन एज एज पॉसिबल। तुसा की कोशिश होनी है, कई दोस्त भरा जड़े ना कई बार आने उन्हें यहाँ कोई अजय प्रोग्राम कर, कोई इे जी महफिल सजा कि जी असा की आई सुना कोई तो दिल सुकून अच्छा है, दिल जी कोई चिक पैदा हो। चलो जी, मैं कोशिश करना वा तुसा ने अंदर चिक पैदा करने की। और माड़ी हमेशा तो कोशिश यही है कि अपनी कम्यूनिटी वास्ते, अपने लोगों वास्ते अगर कोई काम करी सकां, सो वाई नॉट, आई ओवज ट्राई माई बेस्ट, आई गो आउट ऑफ माई वे।

तो जी प्रोग्राम ने वाले नगाल होई रही, उम्मीद करना तुसा सारे माड़े एह जिहड़ा प्रोग्राम पेश कीता जाए एंजॉय करी रहे हो जी, जिथे जिथे भी हो वसने रहो वसने रहो खुश रहो। यू आर लिसनिंग टू रंगे कश्मीर विद द वन एंड ओनली उमर जंजुआ फ्रॉम 97.1 FM रेडियो फजान स्टूडियो चो। अच्छो सा ना गलबात करो, असा की लाइव कॉल करो, नंबर है 01571100971 ये असा की व्हाट्सएप मैसेज कर सकने हो तुसा, वो भी नंबर सेम है उसने कैसे तो लाना +44115 7100971। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जी, मैसेजेस मिगी थैंक यू सो मच जरा जरा बंदा मैसेज करी रहा जी, बड़ी मेहरबानी तुसानी, बड़ा तुसाना प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है तुसानी कि तुसा अपने कीमती वक्त वक्त कटी का असा कि मैसेज करी रहे हो। बा कॉल कर सो तो फिर मज़ा ऐसे, कॉल कर सो तो चैस ऐसे। ऑब्वियसली आई माइट हैव नॉट बीन एबल टू एडवर्टाइज द शो एज मच एज आई वुड हैव लाइक टू, थोड़े जारी गए मसरूफियात सन जिस वजह तो मैं उस तरह इसनी एडवर्टाइजमेंट ना कही सकिया, लेकिन जितने भी जिथे जिथे तक सारे टैक्सी ड्राइवर भरा सुनने टेक वे आए माड़े भरा सुनने माड़े रेस्टोरेंट जिथे भी तुम सुनने हो माड़े भैन भरा जिथे तक माड़ी आवाज़ जानी है तुसा सारे भैन भरा की वेलकम करने और तुसा की याद दिलाना चाहने कि हर ट्यूजडे शामी 7 बजे 7 to 9 एवरी ट्यूजडे फ्रॉम 7 to 9 डू नॉट फॉरगेट वन एंड ओनली शो योर वेरी ओन शो रेडियो शो कॉल्ड रंगे कश्मीर विद योर ओन होस्ट उमर जंजुआ।

मैसेज आयो सी असांखे अॻे जी उनाह जी आहे, वॉट अ ब्यूटिफुल रेडियो शो रंगे कश्मीर, आई लव द टॉपिक, आई लव द टाइटल ऑफ द शो, एंड वी रियली नीडेड दिस एट आवर ओन रेडियो स्टेशन रेडियो फिज़ा, थैंक यू सो मच. इट्स अ सिस्टर, शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन माय नेम, बट वुड लाइक यू टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड गबरू गुलाब वर्गा एंड डेडिकेट दिस टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय फैमिली, ऑल माय कजिन्स. बिल्कुल जी, वी डेडिकेट ईच एंड एवरी वन. And she goes, everybody knows who I am and they know I love this song. Obviously, she also said that please keep them people who are suffering in your duas. Bilkul ji, saasan sariyan duawan unna naal and always tai asa koshish karsa aapni taraf jo banda kari sakna kare. As a community radio, we try our best. Bilkul ji, we're going to dedicate this song, Gulab, Gabru Gulab Varga, from a sister to her cousins, especially to her husband and everybody else. Stay tuned, keep listening to Radio Fizzard 97.1 FM. Keep listening to your own radio show called Rangi Kashmir with one and only Tusan Apna Apna Apna Dost Apna Colleague Apna Yaar, whatever you call me, Umar Janjua. I also would like to dedicate this song to somebody who is really close to my heart as well, and I know she loves this track. Here we are, on the way. Pesh kita jai reha ji, Gabru Gulab Varga, Bagurnam Bullar.

अगर इस हफ्ते ना पूरी कर सका नेक्स्ट वीक कर सा डेफिनेटली डोंट फॉरगेट आई हैव एवरीथिंग रिटन डाउन एंड आई एम नॉट फॉरगेटिंग ईच एवरी वन ऑफ यू सारे माड़े दिल चो माड़िया यादा चो माड़िया दुआवों विचों सब तो बढ़ गया दुआवों विचों तुसां सुनी रहे जी रंगे कश्मीर विद वन एंड ओनली योर ओन होस्ट उमर जंजुआ फ्रॉम रेडियो फिजा 97.1 FM ऑन द लोकल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो वी आर ऑन द डायब रेडियो यू कैन लिसन टू अस रेडियो फिजा .co.uk Also, look, you can tune into Facebook, our radio app, wherever you are. Jithe vi duniya jo tusan sada eh program live suni sakne as well hai.

0: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
6: You are listening 97.1 FM.
7: जी वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। जी उम्मीद करना तुसा सारे वाल होसो, साढ़े नाल ही होसो। यू आर लिसनिंग टू रेडियो फसा 97.1 FM। तुसाना अपना रेडियो शो जी रंगे कश्मीर पेश किया जा रहा। शाहजेब साहब थैंक यू सो मच, शाहजेब साहब का मैसेज आया एंड उन्हें है जी वाह, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। तुसा वाह भी जी है ना, ये बड़ा मतलब रखनी है और साढ़े वास्ते बड़ी हिम्मत ना बास है और मेहरबानी। तो उन्हें गाने की रिक्वेस्ट की थी, बिल्कुल जी असं तुसें गाना लाने। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू रंगे कश्मीर। तुसें अपना दोस्त, अपना भाई, अपना कलीग, अपना यार उमर जंजुआ नाल फ्रॉम वन एंड ओनली रेडियो फजा ने स्टूडियो विचों, रेडियो फजा 97.1 FM नॉटिंगम। अच्छा जेब भरों तो पहले असा एक भाई उन्होंने असा की फरमाइश की थी डड़ियाल नहीं, उन्होंने मैसेज असं पढ़िया सी, उन्हें जी डड़ियाल ले वाले ने कोई गाना लाई लो जी भाई जी तुसा उस गाना असा लाइनअप किया, वो भी इंजॉय द ट्रैक। ये जितने भी साढ़े भ्रा डड़ियाल ने इतने नॉटिंगम रहने, डर्बी रहने, लेस्टर रहने, जिथे जिथे तक साड़ी आवाज़ चाहिए, जिथे तुसा असें सुनी रहे हो, जोड़ा भी कोई डड़ियाल ना उन्होंने सारे किसान पेश करने, वी डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आउट देयर। Here we are guys, the guy, the Dadyal song is on his way.

0: बेटा मुकेश, ये अभी 50 साल का है, और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा। ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: ये हमेशा 21 का ही रहेगा। क्या बात है जी धर्मेंद्र साहब दी। धर्मेंद्र साहब मर गए बेचारे, दुनिया से टूर गए। और हकीकत गल है जी, कदे कदे बंदे की लगना, कई बंदियां की तको, उन्होंने सेहत की तको, माशाल्लाह उन्होंने चाल की तको, उन्होंने उठन बहन हर चीज़ तको ना, तो कदे बुढ़े नहीं लगने तुसां के, वो उऐ जे लगने बिल्कुल जड़े जे सदियों साल पहले तुसां तके होने। बिकॉज यू नो व्हाई, यू नो द मेन पर्पस इज बिहाइंड द ब्यूटी द पर्सनैलिटी ऑफ दिस। वो अपने हर चीज़ ना ख्याल रखने, अपने खाने पीने ना, उठने बहने ना। मी कोई स्टूडियो लाइव कॉल आ रही है जी, जरा टकने किड़े पाए कौन साढ़े नाल, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, प्लीज डू कॉल अस बैक अगेन।

What a Beautiful Track by Arjit Singh जी, उम्मीद करने हैं जी तुसां की ये पसंद आया होसी। साढ़े को तकरीबन रही गए जी 5 मिनट प्रोग्राम अज नहीं, पहली जरा पहला प्रोग्राम रंगे कश्मीर ना पहला शो रेडियो शो पेश किया गया तुसां खिदमत च, उम्मीद करना तुसां सारिया इंजॉय किया होसी और गप शप ही होनी है, गप शप मारने बंदा फ्रैश हो जाना, कोशिश करया करो कि एक दूए की जरा ना टाइम देना चाहिए, गप शप मारनी चाहिए और एक दूए नाल इन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए और खुश रहो, खुशियाँ बांटो, आपू खुश रहो, बाकियों वास्ते खुशियाँ चाहो, हर बंदे वास्ते अच्छी सोच, अच्छा गुमान रखो, कोशिश करो अपने वास्ते जो चाहने वो दुए वास्ते पहले जाओ, जिंदगी का मज़ा तो ही है जो तुसा ना वजूद जरा ना बाकियों वास्ते जरा ना वो रहमत हो जहमत ना हो, समझ गई उस गल कि अपने वास्ते जी चीज़ मंगनी दुआ करो कि यार पहले इसकी दे तो फिर मी दे, ठीक है। तो साढ़ा ये प्रोग्राम है रंगे कश्मीर हवाले ने, साढ़ा ये पैगाम है सारे वास्ते, वी ऑल लव यू, तो असल दुआ है अल्लाह ताला तुम सारे खुश रखे। तो एक आखिरी सॉन्ग असों की प्ले करने टाइम लगे क्योंकि मर्सी ब्रेक ने टाइम हो गया, उस पहले मैं तो सारे भैन भ्रा को तमाम लिसनरशिप को सारे को इजाजत जाना और इंशाल्लाह जिंदगी रही, तो अगले ट्यूजडे सेम टाइम सेम स्टेशन है फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। एंड आई मेक शो द कॉल्स आर वर्किंग एंड तौसीफ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड मेकिंग मी अवेयर ऑफ दिस लिटिल इशू, टेक्निकल इशूज ही ठीक हो गया, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं होना गा। तुसा सारे अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अपने प्यारे का ख्याल रखे, अपने फैमिली ना, अपने खानदान ना, दोस्त बाब ना, तमाम एवरीबॉडी ऑल द लव्ड वंस हू आर अराउंड यू, उन्हें सारे बहुत सारा ख्याल रखे, तुसा कि छोड़े जाने जी इस गल नाल कि खुश रहो, हसने रहो, वसने रहो, अल्लाह ताला कामयाब करे, तत्ती वाह ना लगे तुसा सारे की, तो मिगी भी सारे दुआवां याद रखे, ठीक है, खुशियाँ बखेरो, आपू भी खुश रहो, बाकियों भी खुश रखो, इयै साना अज ना मैसेज है तुसा सारे वास्ते। अंटिल नेक्स्ट वीक एवरीबॉडी टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू योर ओन शो, योर ओन रेडियो शो विद योर ओन होस्ट उमर जंजुआ, द रेडियो शो इज कॉल्ड रंगे कश्मीर। अंटिल नेक्स्ट वीक यू टेक केयर, look after yourself and inshallah we'll see you all at the same time at the same platform next week. Until then you take care, Allah Hafiz.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए
2: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं
1: लासा ट्यूशन सेंटर
2: जी हाँ इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता
2: मसला ही कोई नहीं लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ
3: जी हाँ आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़
6: You are listening 97.1 FM

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ
3: हो
2: यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: listening to 97.1 FM Radio Fazza.
1: Radio Fazza.
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968

0: 6444 Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
2: hayatweddings.co.uk।
3: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आप?

0: के पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
2: You are listening 97.1 FM.